0: जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

जिस प्रकार तेज धूप में व्याकुल शरीर को पेड़ की छांव सुकून देती है, वैसे ही ईश्वर की सरल तन मन आत्मा को शांति देती है।

ये तो सच है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, और ये भी परम सच है में आत्मा निवास करती है जो अमर है। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति हमें दृढ़ता और विश्वास से भर देती है।

लोभ मोह अहंकार तृष्णा को त्याग कर ही भगवान को पाया जा सकता है। पवित्र मन से उसी का ध्यान कर ईश्वर की उपस्थिति हो जाती है।

0: अभी सुन रहे थे आप भक्ति संगीत का प्रातःकालीन। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर 2026 यानी 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय होगा एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया कारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील लोकवानी, हेमेटोलॉजिस्ट और ऑंक पूछ सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर 2026 को समय होगा 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 3 और 2 7 1 0 2 2 4। इंदौर का STD कोड है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक को समय रहेगा 10:32 से 11:02 तक और ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे विविध भारती इंदौर यानी FM, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आज का चिंतन आप सुन रहे हैं, स्वर है रूपाली चौहान के, आलेख है चंद्रशेखर का।
1: मनुष्य ने सदियों से सुख की खोज की है। उसने धन कमाया, महल बनाए, राज्य जीते, सम्मान पाया, लेकिन फिर भी उसके मन की बेचैनी समाप्त नहीं हुई। बाहरी उपलब्धियां बढ़ती गई पर भीतर का शोर भी बढ़ता गया। ऐसे ही समय में एक

कि यदि जीवन में इतना वैभव होने पर भी मन अशांत है तो वास्तविक सुख कहाँ है। यही प्रश्न को गौतम बुद्ध बना गया। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि मन की शांति किसी वस्तु, व्यक्ति, ये हमारे अपने भीतर जन्म लेती है। सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जिसकी कल्पना कोई भी कर सकता था, राजमहल, परिवार, सम्मान और सुख सुविधाएं। फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था। जब उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तब उन्हें समझ आया कि संसार का प्रत्येक सुख अस्थाई है। जो वस्तु बदलने वाली है, उससे स्थाई शांति की आशा करना स्वयं को धोखा देना है। आज का मनुष्य भी उसी भ्रम में जी रहा है। उसे लगता है कि अगली नौकरी, अगली कार, बड़ा घर या अधिक प्रसिद्धि उसे शांति दे देगी, लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही लेती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने इसी सत्य को समझाया कि दुख का मूल कारण निरंतर कुछ और पाने की इच्छा। जब तक मन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तब तक शांति उससे दूर ही रहेगी। विरोध नहीं किया, बल्कि उनके प्रति हमारी आसक्ति को समझने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संसार में रहो, कर्म करो, प्रेम करो, परिवार निभाओ, लेकिन किसी भी वस्तु को अपनी शांति का आधार मत बनाओ, क्योंकि जो भी बदल सकता है, उसके साथ हमारी शांति भी बदल जाएगी।

सच्ची शांति तब आती है जब हमारा सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है। वो स्त्री पूरे नगर में भटकती रही, समस्त मानवता का दुख है। उसी क्षण उसके मन में स्वीकार का भाव जागा और उसका शोक धीरे धीरे शांत होने लगा। ये घटना हमें बताती है कि मन की

0: लेकिन मन या तो अतीत के पछतावों में भटकता रहता है या भविष्य की शांति का एकमात्र द्वार है हमारी पकड़ से छूट जाता है। मन की शांति का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं है, इसका अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी हमारा मन संतुलित बना रहे। अंततः मन की शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि जा है। ये तब जन्म लेती है जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं, इच्छाओं के दास नहीं बल्कि उनके स्वामी बनते हैं और हर परिस्थिति में सजग बने रहते हैं।
1: अभी सुन रहे थे आप आज का चिंतन, वाचक स्वर थे रूपाली चौहान की, आलेख था चंद्रशेखर का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज खेती की बातें में जानिए मृदा परीक्षण के विषय में, वाचक स्वर है प्रेरणा पहारे।
2: तो स्वीकार करो हमारे राम राम। बैबनहुन आज अपन बात करांगा मृदा परीक्षण से जुड़ेल। कोई भी फसल लगाना का पेड़ खेत की तैयारी में सबसे पहले जरूरी काम छे खेत की माटी को परीक्षण। फसल की अच्छी पैदावार का लेना मिट्टी परीक्षण बेहद जरूरी छे। हमारा खेत का लेना मृदा परीक्षण एकमात्र सुरक्षित विकल्प छे। बैबनहुन मृदा परीक्षण से खेत की वास्तविक उर्वरक क्षमता न माटी को पीएच मान मालूम होएगा, जेका से किसान भाई बहन फसल की जरूरत का अनुसार खाद न उर्वरक न को चयन करेगा, जेका से फसल की पैदावार बढ़ी सकज न अनावश्यक लागत में भी कमी आवेगा। कटाई का बाद में बुआई का पहला मज माटी परीक्षण जरूर से करा लेवा। मृदा परीक्षण से मिट्टी में पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, पीएच मान, कार्बन लवणता सभी की जानकारी एक बार में मिली जाएगा। ये तो बात करी अपन ना कि मृदा परीक्षण काई छे ना क्यों जरूरी छे। अमा मृदा परीक्षण किन्हा प्रकार से करा। पहले तो खेत में सही स्थान को चुनाव करा। खेत की मेड़, पेड़ न की छाव, खाद को

0: ना मा मिट्टी का अच्छा सी मिलाना का बाद मा इनका चार भाग मा एका हिस्सा करा, ना आमना सामना वाला दुई हिस्सा का हटाई देवा, ना बचा हुआ हिस्सा का एक बार फिर से मिलाई लेवा, ना ई प्रक्रिया तब तक करा जब तक कि मिट्टी जो छे वो 500 ग्राम या आधा किलो तक मिट्टी नहीं बची जाए। अब एक बाद मा मिट्टी का कपड़ा की थैली मा अच्छा सी पैक करी लेवा, ना ओका पर अपनो नाम, मोबाइल नंबर, पता, खेत को नंबर, खसरा नंबर या जो भी फसल आप बोगा उको नाम आज का लेना भेजा। जांच में आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड में लगा जेका में मिट्टी का पोषक तत्व जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, पोषक तत्व की मात्रा आपका मालूम पड़ेगा ना, साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व, मिट्टी को पीएच मान, ओके लवणता, सभी की सटीक जानकारी पर कृषि वैज्ञानिक ने की सलाह का अनुसार अपना खेत में बोई जा रही फसल में सही मात्रा में उर्वरक न खाद डाले न फसल की पैदावार अपन बढ़ाई सक लेना। इतरोज कहनो अच्छे हमारे भाई बहन नसी, आज्ञा देव आपकी बहन प्रेरणा पहारे ख, राम राम।
1: खेती की बातें अभी सुन रहे थे आप इंदौर केंद्र से, जिसमें आज हमने जाना मृदा परीक्षण के विषय में, जानकारी दे रही थी प्रेरणा पहारे। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कान का आज का प्रसंग ए हरिहरन मिताली पी सिंह और उत्तरा कीलकर के गायन स्वर में।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ, ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है, तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपनी स्वामिनी उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आँखों की पुतली बना लूँ। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग ए हरिहरन, मिताली बी सिंह और उत्तरा केलकर स्वर में। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आप एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर 2026 यानी कि कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय रहेगा एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और रक्त कैंसर से संबंधित जानकारी। आप इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर

डॉक्टर सुनील लोकवानी, हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल यानी FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। साथ न्यूज़ ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार यानी कि कल दिनांक समय रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। नंबर के पहले इंदौर का STD 31 जरूर लगाइएगा। फोन करना ना भूलिएगा। फिर कल गुरुवार को 8 अक्टूबर समय रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक और ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं विविध भारती इंदौर यानी FM 101.6 MHz या फिर मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई और से लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

और सुबह 9:15 से सुगम संगीत में आप सुनिए कपिल पुरोहित की गाई कुछ रचनाएं। गंधर्व और शरद सूर्यवंशी। ठीक है, समय होगा सुबह 10:00 और सुबह 10:05 से सुनिए फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। हमारा अन्य फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आप सुनेंगे सुबह 11:00 से और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 12:00। आप सुन सकेंगे दोपहर 1:00 से। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर की सभा में 1:30 से और 1:45

युववाणी कार्यक्रम आपके लिए लाएंगे हम रोज की तरह शाम 5 बजे। 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा फिल्म से और प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का आप सुनेंगे शाम 6 बजे से। शाम की सभा में सुगम संगीत में कपिल प्रेम सिंह, मोहन सिंह, दीपाल पुरिया और मंडली की गाई मालवी लोक गीत आप सुनेंगे शाम 6:45 से। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का समय होगा शाम 8:35 से। सुनना ना भूलेगा फिल्म संगीत। चित्रगीत सुनिए रात 9:15 पर। चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनिएगा नाटक खामोश सच और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रात 10:30 होगा, जिसमें सुनिएगा सुनील मसूरकर का गायन, राग होगा यमन, संगतकार होंगे परमानंद गंधर्व और शरद सूर्यवंशी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संस्कृत में समाचार बस कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से।

0: मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000,000,000,000 रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारत घाना देशयोर्मध्ये वैज्ञानिकानुसन्धानस्य शैक्षणिक क्षेत्रस्य क्षमतावर्धनस्य कृष्यनुसन्धानस्य तथा शिक्षायाश्च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं द्वयोः सन्धि ज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य घानायात्रायाः समये एतयोः सन्धि ज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानम् घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुरजीतो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घानादेश सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचार विनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलम् 8 स्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं 5 स्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां 1-0 इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया, किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का। और एक प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: नई सूची में कुल 375 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ

समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल से

0: लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर 2026 यानी कि कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय रहेगा एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और रक्त कैंसर से संबंधित जानकारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं एवं प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील लोकवानी, हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल यानी कि FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार यानी कि कल दिनांक 8 अक्टूबर 2026 समय रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और इंदौर का STD कोड है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर 2026 यानी कि कल सुबह 10:32 से 11:02 तक। और आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं विविध भारती इंदौर यानी कि FM 101.6 MHz साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं,
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा। जकारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आज भारत मंडपम में समृद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनो से लाए गए दो चीतों को विमुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की शुरुआत होगी। 34 देशों और 15 राज्यों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि

0: राष्ट्रीय और 15 राज्यों के 180 घरेलू टूर ऑपरेटर समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मार्ट के दौरान 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों और समझौतों को अंतिम भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी देकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे कारोबार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज देशभर में सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएंगी। प्रदेश में भी इसके उम्र मुरैना में सेवा ज्योति कलश यात्रा के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली सभा को भी संबोधित करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के लिए पंजीयन कल से शुरू हो गया है। इसे लेकर मंत्रालय में मक हुई। इस अभियान में विद्यार्थी, युवा, स्टार्टअप, एमएसएमई, किसान, कारीगर और ग्रामीण जनजाति नवाचारकर्ता स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए अपने आइडिया दे सकेंगे। राज्य दिसंबर में प्रस्तावित है, जिसके बाद चयनित प्रतिभागी अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ष 2027 को प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव में 12 नए मेडिकल कॉलेज और रोजगार परक कोर्स के लिए 12 नए विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। डॉ यादव ने कहा कि 1,00,000 युवाओं को कौशल उन्नयन से जोड़ा जाएगा और सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। युवाओं के स्टार्टअप आइडिया को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रूपये का आइडिया फंड भी बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स में प्रदेश के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 11 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।
2: भोपाल में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहां से निकले बच्चों ने 11 अपने जीते, जिसमें 5 गोल्ड मेडल है। हमने एजुकेशन में स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट के रूप में भी लिया। स्पोर्ट्स के कोच, पढ़ाने वाले, सारे क्वेश्चन की भी व्यवस्था की। 230 विधानसभा हर जगह स्टेडियम बनाने का निर्णय किया है।
0: वहीं मुख्यमंत्री ने 2029 तक प्रदेश को मुक्त करने के संकल्प की बात भी कही।
2: नशे से परिवार के परिवार बिगड़ जाते हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। हमारी सरकार, हमने निर्णय किया 2029 तक हम पूरे प्रदेश को और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को नशे से मुक्त कराएंगे।
0: प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत कल प्रदेश भर में बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कृमिनाशक दवा दी गई। 1 से 19 साल तक के करीब 1,12,00,000 बच्चों और किशोरों के साथ साथ 1,00,000 महिलाओं को एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक दी गई। यह अभियान कृमि संक्रमण, पोषण संबंधी समस्याओं और एनीमिया के जोखिम को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। वहीं इसी के तहत जबलपुर के शासकीय पंडित लज्जाशंकर झा मॉडल स्कूल और सतना के कन्याधवारी स्कूल तथा श्योपुर के विजयपुर में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि नाड़ी विश्लेषण भारत की समृद्ध चिकित्सकीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है और इसे आधुनिक तकनीकी व आयुष विज्ञान पाल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि नाड़ी विश्लेषण कम खर्चीली और बिना किसी शारीरिक नुकसान वाली जांच पद्धति है, जिसका ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। कर्मयोगी भारत की ओर से नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज सेवा भाव विषय पर विशेष ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले इस सत्र का संचालन नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम करेंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारियों में संवेदनशील जवाबदेही और नागरिक केंद्रित सोच को बढ़ाने पर चर्चा होगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात कर 15 जनवरी को भोपाल में होने वाले सेना दिवस कार्यक्रम का आमंत्रण दिया। सेना दिवस पर भोपाल में मुख्य परेड, सैन्य प्रदर्शनी, शौर्य संध्या और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट डिस्प्ले सहित कई कार्यक्रम होंगे। मुख्य परेड भेल क्षेत्र में होगी, जबकि सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी जम्बूरी मैदान में लगाई जाएगी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री

निर्मला भूरिया ने कहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर काम करना होगा। भोपाल में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35,000 से ज्यादा अधिकारियों का मैदानी तंत्र तैयार किया गया है। अब बाल विवाह वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी मतदान केंद्रों पर अगले 3 दिनों तक विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे और फॉर्म 6 के अलावा कोई घोषणा पत्र

तंत्र तैयार किया गया है। अब बाल विवाह वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी मतदान केंद्रों पर अगले 3 दिनों तक विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे और फॉर्म 6 के अलावा कोई घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में सेवा ज्योति यात्रा निकलेगी और भोपाल में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की शुरुआत होगी। 34 देशों और 15 राज्यों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए।

श्रोताओं, आ गया है सदाबहार फिल्म संगीत राशा भोसले के स्वर में गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली, संगीत ओपी नैयर का है, बोल है एस एच बिहारी के।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। फिल्म का नाम था कश्मीर की गली। इस गीत को लिखा था SH बिहारी ने, संगीत ओपी नैयर का था और आप इसे सुन रहे थे सुनहरे पल कार्यक्रम में।

0: गुलजार का लिखा ये गाना अभी सुना आपने मौसम फिल्म से लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज में।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दादी लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

छोटी सी बात, इस फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, मुकेश के स्वर में, लिखा था योगेश ने, सलील चौधरी का संगीत था। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर चल रहा है कार्यक्रम सुनहरे पल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम था आक्रमण और इसे आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत से सजे कार्यक्रम सुनहरे पल में।

जावेद अख्तर का लिखा ये गाना अभी आपने सुना मशाल फिल्म से किशोर कुमार के स्वर में। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था।

गुलजार का लिखाई की तभी सुना आपने आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने, फिल्म का नाम था खुशबू। इसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जहां चल रहा है सदाबहार फिल्म संगीत कार्यक्रम है सुनहरे पल।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मीनू के स्वर में, ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म से, संगीत ओ पी नैयर का था। और इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनिए समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
3: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके

0: तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
1: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
0: समुद्र और जल मार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जल मार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
2: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑल्सो कम अप विद ऑटो मेट्रो।
0: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जल मार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
4: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
3: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: डाउनलोड कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग, जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोर्वोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेइचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है। उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के एसएमई विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर सीबीआई के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
3: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. We have more from a correspondent.
8: To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnav said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are very few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra Modi introduced several changes in Gujarat through his programs and policies for which Mr. Modi was honored across the world. The Gujarat model was recognized and appreciated across the world and was subsequently implemented across India. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
7: Vice President C.P. Radhakrishnan has greeted Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of service to the nation as head of government. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, Mr. Modi's journey as Pradhan Sevak has transformed the vision of inclusive development into a nationwide mission guided by Sabka Saad, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. is that across his visits to states and union territories, he has witnessed Bharat's visible transformation through improved connectivity, digital advancement, expanding opportunities, and inclusive development. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu praised Prime Minister Modi, highlighting several core qualities that he believes makes the Prime Minister's journey exceptional. In an article

0: Atal Tunnel, Rohtang today. She will visit both the northern and southern portals of the tunnel and receive information about the historic tunnel from officials of the Border Roads Organization. In the afternoon, President Murmu will also offer prayers at the famous Hidimba Temple in Manali. Elaborate security arrangements have been put in place in Manali, Atal Tunnel, Rohtang and surrounding areas in view of the President's visit. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Manali.
1: A 4.9 magnitude earthquake struck Uttarakhand's Chamoli district last night, sending tremors across several parts of the state and parts of Delhi NCR. According to the National Center for Seismology, NCS, the earthquake occurred at around 10:24 p.m. with its epicenter in Chamoli at a depth of approximately 13 kilometers. The Reserve Bank of India will announce its bi-monthly monetary policy today, with several experts expecting a rate hike after nearly 3.5 years as inflation pressures rise due to the continuing West Asia conflict. The last repo rate hike was in February 2023, when the RBI raised the rate by 0.25% to 6.50%. It then kept the rate unchanged through 2023-24 before beginning its rate cut cycle in 2025. Currently, the RBI's policy repo rate stands at 5.25%. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in a special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Sagarmala program.
2: India's maritime sector has been the backbone of the country's trade and has grown manifold over the years. To harness its more than 11,000 kilometer long coastline, around 14,500 kilometers of potentially navigable waterways and strategic location on key international maritime trade routes, the government launched the Sagarmala program in 2015 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The program aims to promote port-led development by modernizing ports, improving connectivity, promoting coastal shipping and strengthening coastal communities. Prime Minister Narendra Modi has emphasized harnessing India's maritime potential to drive economic growth and development.
3: Bharat Sarkar ne Rajya Sarkar ke sahyog se Sagarmala Pariyojana ke tahat port infrastructure ko upgrade kiya hai. Port connectivity ko bhi badhaya hai.
2: For Goa, a state with strong maritime heritage, extensive waterways and the Mormugao port, Sagarmala is creating new opportunities by strengthening port infrastructure, inland waterways and cruise tourism. Captain of Ports Goa, Octavio Rodriguez, told Akashwani about the work being undertaken under the Sagarmala program in the state.
4: It is going to change many jetties. Now see, another 10 jetties we are going to get, already approved. Or only thing now we have need to install it. They are all floating jetties which will take care of the tourism activities over there, passengers for transportation system, because we are going to also come up with the auto metro.
2: Goa has so far completed 10 Sagarmala projects with an investment of over 840 crore rupees. These projects are strengthening maritime infrastructure and improving connectivity across the state. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panchi.
1: India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. IMD has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds over east-west Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, Chandigarh, Delhi and Himachal Pradesh today. Similar conditions are likely to prevail over Jharkhand, Chhattisgarh, Kerala, Odisha, Punjab, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim. Met Department has said the national capital is expected to witness partly cloudy skies. In a major overhaul of the state's Madrasa education system, the West Bengal government has abolished the Madrasa Education Commission. Chief Minister Subhendu Adhikari announced yesterday that the commission has been merged with the School Service Commission, bringing Madrasa recruitment under the SSC from now on. India defeated West Indies by 8 wickets in the opening T20I in Lucknow last night to take a 1-0 lead in the 5-match series. Put into bat, West Indies were bowled out for 171 in 19.1 overs. Chasing a target of 172, India comfortably reached the target in just 14.4 overs, losing only 2 wickets. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
5: Thank you, Abhishek. Cabinet lauds Narendra Modi on 25 years as head of government, leads Hindustan Times. BJP to launch yatras to mark Modi's 25 years in public life, reports the Asian Age. The opposition's protest in central Delhi that lasted for 9 hours yesterday is noticed prominently by the dailies. Opposition hits the street against CEC, its leaders detained, leads the Indian Express, adding Parliament Street shuts down for much of the day. BJP accuses opposition for fomenting anarchy, says the Pioneer. AIR Marshal Ashutosh Dixit, to be next IAF chief, informs the Pioneer. And finally, master storyteller Jeffrey Archer dies at 86, reports the Financial Express. The paper writes, British novelist, former politician, leaves a lasting literary legacy. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from the previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें सेहत की। आज सुनिए मौसमी बीमारियों से बचाव एवं देखभाल। इस शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर राय से इस विषय पर अखिलेश बाथम की बातचीत।
7: बातें सेहत की कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर रॉय को। डॉक्टर अंकुर रॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में।
8: शुक्रिया अखिलेश जी।
7: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो इस समय बच्चों में जो मौसमी बीमारियां इस समय फैल रही हैं, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
8: अखिलेश जी, इस समय वायरल बुखार, वायरल फीवर
7: जी
8: बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं कि स्कूल में एक बच्चे से दूसरे बच्चे को संक्रमण होना
7: जी,
8: दूसरा बारिश अब धीरे धीरे जैसे हटने लगी है, वापस से मौसम सूखा मतलब खुश्क मौसम होने लगा है
7: जी,
8: और चेंजिंग वेदर्स में आप समझें कि इस तरह के वायरल बुखार संक्रमण बहुत ज्यादा होते हैं
7: जी। ऐसे समय में हम देखते हैं कि मौसम जो जैसे बदल रहा है, हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है और शाम के समय थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, तो फिर बच्चे मानते नहीं और ऐसे समय में पंखा चला के सो जाते हैं, तो उस समय माता पिता को क्या देखभाल करनी चाहिए उस समय?
8: बच्चों का हाइड्रेशन और मतलब पानी की कमी ना हो बच्चों को, इस चीज का भरपूर ख्याल रखें। बच्चे नींद बराबर लें, कोई अगर संक्रमित बच्चा है उससे बराबर दूरी बना के रखें। माँ बाप से मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट रहती है कि जो बच्चे बीमार हैं उनको कम से कम 3 से 5 दिन स्कूल ना भेजा करें, क्योंकि ये संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता है। प्रॉपर खानपान और आराम, नींद, न्यूट्रिशियस फूड, ये सब कुछ एक चीजें हैं जिससे हमारे बच्चे काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं।
7: ये तो आपने बोला कि बच्चे को स्कूल ना भेजें, लेकिन घर में अगर दूसरे बच्चे हैं तो उस समय फिर कैसी देखभाल करें कि दूसरे बच्चे को ये बीमारी ना फैले?
8: ऐसे समय पर ये ध्यान रखना है कि एक संक्रमित बच्चा दूसरे के संपर्क में कम से कम आए, पहली बात। दूसरी बात, एक मल्टीविटामिन सिरप या टैबलेट जो बच्चा स्वस्थ है वो स्टार्ट कर दें लेना। तीसरी चीज है विटामिन सी की गोलियां या फिर विटामिन सी वाले जो फल होते हैं, केले हो गए, गुआवा हो गया, इस तरह के जो फल रहते हैं, आंवला
7: जी,
8: ये सब बच्चे अगर लेंगे तो काफी हद तक संक्रमण से बचे रह सकते हैं।
7: ये तो हुई बच्चे को बीमारी से बचाने का। अभी हम देख रहे हैं कि आजकल चिकन पॉक्स की बीमारी भी बच्चों में फैल रही है, तो इससे कैसे हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं?
8: 2-3 चीजें जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर कोई बच्चा संक्रमित है चिकन पॉक्स से तो वो बिल्कुल भी दूसरे बच्चों के संपर्क में 5 दिन के लिए न आए। दूसरी बात है, इसका एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, टीकाकरण, जो कि 2 डोजेज में दिया जाता है, वेरिसेला वैक्सीन
7: जी।
8: ये हम दे सकते हैं 15 महीने की उम्र के बाद में।
7: अच्छा,
8: 2 डोजेज देते हैं 3 महीने के गैप पे।
7: अच्छा,
8: बहुत सेफ वैक्सीन है, बिना साइड इफेक्ट्स का वैक्सीन है। अगर ये

0: लेते हैं तो 95% प्लस ऐसे बीमारियों से बच सकते हैं।
1: आपने वैक्सीन का जिक्र किया तो मैंने अक्सर देखा है कि वैक्सीन का एक चार्ट डॉक्टर्स बना के देते हैं और दूसरा वैक्सीन का एक चार्ट सरकारी अस्पतालों से मिलता है कि एक चार्ट में बहुत सारी वैक्सीन रहती हैं और एक चार्ट में बहुत कम वैक्सीन रहती हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देंगे उन माता पिताओं को जिनके मन में कहीं ना कहीं संशय है?
0: ये आपने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन पूछा अखिलेश जी। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट हमको काफी हद तक वैक्सीन सारे प्रोवाइड कर देते हैं
1: जी,
0: मैं ये बताना चाहूंगा कि उनके अलावा भी 4 से 5 एक ऐसी बीमारियां हैं जिनके वैक्सीन सरकारी तंत्र में मौजूद नहीं रहते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो सिर्फ हम प्राइवेट में डॉक्टर्स लगाते हैं। मेरा ये कहना है कि कम से कम जो गवर्नमेंट के वैक्सीन हैं वो तो हर बच्चे ने लगाना ही चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अगर फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ करें तो प्राइवेट में जाके ये 4 वैक्सीन जरूर से लगवाएं। और जो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक होता है जो गंदे पानी से पीलिया फैलता है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, 2 डोजेस में लगता और 6 महीने के गैप पे 1 साल के बच्चे या उससे बड़े बच्चों को हम लोग लगा सकते हैं। एकदम सेफ वैक्सीन है और बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। दूसरा वैक्सीन होता है फ्लू का वैक्सीन।
1: अच्छा।
0: अब इंदौर और इसके आसपास की जो जगह है यहां पर इतनी साफ सफाई के बाद ये देखा गया कि फ्लू के केसेस बहुत बढ़ गए। फ्लू का वैक्सीन बड़ा इफेक्टिव वैक्सीन है। 3 साल से छोटे बच्चों में हम बताते हैं कि इसके 2 वैक्सीन लगते हैं 1 महीने के गैप पे और बहुत सेफ वैक्सीन है, इसके नियरली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और फिर उसके बाद हर साल 1 वैक्सीन लगता जब तक आप बच्चे को उसके संक्रमण से बचाव करना चाहें। तीसरा वैक्सीन है टाइफाइड का वैक्सीन, जो कि आपको पता है टाइफाइड एक गंभीर पेट की बीमारी है, उससे बचाव करता है। तो आप टाइफाइड का वैक्सीन लगवाएं। टाइफाइड के वैक्सीन 6 महीने की उम्र के बाद में कभी भी बच्चों को लगाया जा सकता है और इसके 2 टीके लगते हैं, 1 6 महीने पे अगर आप लगाते हैं और दूसरा 2 साल की उम्र पर।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, एक बात, क्योंकि वैक्सीन के बारे में आपने इतना कुछ बताया तो मेरे मन में सवाल ये उठा कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित वैक्सीन के बारे में आपने बताया, यदि कोई व्यक्ति उनके अलावा वैक्सीन टीके नहीं लगवा पाता है तो क्या बच्चे को कोई खतरे की बात तो नहीं?
0: देखिए, ये जो 4 बीमारियों के टीके मैंने अभी आपको बताए, इनसे संक्रमण का कुछ हद तक खतरा तो रहेगा,
1: लेकिन कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं। अगर नहीं लगवा पाते हैं,
0: अगर नहीं लगवा पाते हैं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम जितना गवर्नमेंट हमको अपने सिस्टम में दे रही है, मेरी सलाह है कि कम से कम वो वैक्सीन समय पे जाके लगवाएं। मैं सब मरीजों को ऐसे ही बताता हूं कि वैक्सीनेशन जो है वो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: समय पे लगवाइए,
1: क्योंकि बच्चा अगर स्वस्थ है, हंसता खेलता है तो परिवार पूरा हंसता खेलता है, और जिस परिवार में बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो पूरे घर में मायूसी छा जाती है।
0: बीमार सिर्फ बच्चा नहीं होता, पूरा परिवार बीमार हो जाता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसीलिए संक्रमण से बचाव का सबसे उपयुक्त तरीका जो है वो है टीकाकरण।
2: डॉक्टर साहब, हैंड फुट माउथ डिजीज क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: हैंड फुट माउथ डिजीज एक ना अक्टूबर, सितंबर और अगस्त इस समय की बहुत एक आम बीमारी है, जो कि चिकन पॉक्स से मिलता जुलता एक कॉक्सेकी ग्रुप ऑफ वायरस होता है, उससे होती है। और इसमें बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक तरह के एक लीजन्स होते हैं, घाव होते हैं, जो कि हाथों पे, पैरों पे और चेहरे पे होते हैं। दाने निकल आते हैं, लालपन आ जाता है और इनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, खुजली चलती है। अब चूंकि ये बीमारी भी बड़ी संक्रामक होती है, हम कहते हैं कि 5 से 7 दिन तक बच्चों को घर में ही रखें और दूसरे बच्चों के बिल्कुल भी संपर्क में ना आने दें। इसका एक और जो खराब रूप हमने देखा है उसमें क्या होता है कि मुंह के अंदर और गले तक में छाले हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: अब उस समय छोटे बच्चे, अगर 1-2 साल के बच्चे हैं तो इनका खाना पीना बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आपको इस तरह के कभी भी कोई बच्चे मिलते हैं जिनको केवल हाथों पे, पैरों पे और मुंह पे घाव मिल रहे हैं, तो प्लीज इसको नजरअंदाज ना करें और अपने जो भी चिकित्सक जिनको आप दिखाते हैं उनको पहले मौके जरूर से दिखवाइए।
1: तो इसका कोई टीका है क्या कि हम लगवा सकते ताकि बच्चे को बचा सकें इस रोग से?
0: जी नहीं, इसके लिए अभी तक कोई टीका अभी तक नहीं आ पाया है, बट हाँ यह है कि चूंकि ये चिकन पॉक्स की बीमारी से मिलता जुलता एक बीमारी है, तो इसलिए कम से कम चिकन पॉक्स का टीका लगा के अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा कर रखें।
1: बिल्कुल, ताकि बच्चा हमारा स्वस्थ

0: कि अगर कोई बच्चा तेज बुखार और उल्टियों के साथ में हमारे पास आता है तो पेट के इन्फेक्शन से ज्यादा खतरा हमको ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ज्यादा डर रहता है। तो ऐसे केसेस में जब भी हमको इस प्रकार के बच्चे मिल रहे हैं कि पेट दुख रहा है, उल्टियां हो रही है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होने लग रहा है, ठंड लग रही है बच्चों को, इन बच्चों में हम लोग सबसे पहले एक यूरिन का टेस्ट कराते हैं और इस गंभीर बीमारी को सबसे पहले रूल आउट करते हैं, कोशिश करते हैं। जी,
1: इस बीमारी से बचने के उपाय तो आपने बता दिए हैं, पर मेरा सवाल ये है कि ये बीमारी बच्चों में होती कैसे है?
0: इस समय अखिलेश जी पानी की बड़ी कमी हो जाती है क्योंकि मौसम बदल रहा है, बच्चे ज्यादा पानी नहीं पीने में आता है बच्चों के। तो ख्याल ये रखने की जरूरत है कि पेरेंट्स, जो बाकी टीचर्स हैं स्कूल्स में, वो बच्चों को प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
2: बिल्कुल,
0: ताकि अगर कोई इस तरह का कीटाणु उनके किडनी यूरेटर ब्लैडर सिस्टम में पनप भी रहा है तो वो बराबर फ्लश आउट होता रहे। दूसरी चीज जो है, अगर इस तरह के दर्द या जलन के पेशाब करते समय अगर लक्षण मिलते हैं तो बच्चों को हमको हाइड्रेट करना है एक, तो दूसरी बात उनके अंडरगारमेंट्स हर 12 घंटे में बदलना है।
2: बिल्कुल,
0: और सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन से जाके मिलने की जरूरत है।
1: छोटे बच्चों में एक बात और देखने को मिल रही है
2: कि अक्सर माँ बाप लंबे समय तक बच्चों को डायपर वो पहना देते हैं और लंबे समय तक बच्चे पहने रहते हैं, तो ऐसे में उनकी स्किन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है?
0: आपने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा अखिलेश जी। डायपर भी अपने आप में कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तो जो पुरानी लंगोट जो होती थी, चूंकि उसमें हवा का आदान प्रदान बहुत अच्छा होता रहता था तो यूटीआई जैसी बीमारियां कम होती थी। दूसरी बात यह है कि डायपर पहनाते समय, चूंकि डायपर पूरा बंद रखता है बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को, हमारा ये कहना है कि अगर आप कभी डायपर पहनाए भी तो भी 3 से 4 घंटे में डायपर को बदल दिया करें। और डायपर पहनाने के पहले कोई सा भी एक इमोलियंट, कोई ऑयल या वैसलीन जैसा कोई एक प्रोडक्ट जेली बच्चों के पूरे ग्रोइन एरिया में, जितने भाग में डायपर कवर करता है, उधर ये लगाने के बाद ही डायपर पहनाए करें। फिर भी कोशिश हमेशा ये रहे कि लंगोट ही पहनाए और उसको 2-2 घंटे में बदलते रहे। डायपर बहुत ही इमरजेंसी की कंडीशन में ही बच्चों को पहनाना है,
1: यानी कि जब हम घर पर रहें तो उस समय बच्चों को कपड़े की बनी हुई लंगोट पहना सकते हैं, और जब बाहर जाना हो, इमरजेंसी हो, तो फिर डायपर का उपयोग करना चाहिए।
0: डायपर 2 तरह की बीमारियां करवाता है बच्चों में। एक तो डायपर रैश करा देता है, जो कि लैट्रिन के रास्ते में बच्चों के घाव बन जाते हैं। उसका एक बहुत ही एक सीवियर जो कंडीशन होती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एंटेरोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका। तो इस तरह की बीमारियां जो कि काफी घाव करा देती है, तो डायपर से होती हैं। बचाव रखें, डायपर कम से कम पहनाएं बच्चों को। दूसरा, एक फंगल डर्मेटाइटिस, फफूंद की बीमारी बच्चों के जो जांघों के जो क्रीजेस रहते हैं उधर हो जाती है। तो ये दोनों बीमारियों से बचाव के लिए डायपर को कम से कम बच्चों को ऑफर कीजिए।
2: आजकल बच्चों में मोटापा भी काफी देखने को मिल रहा है, छोटे बच्चों में। पहले मोटापा कहते थे कि धनाढ्य लोगों की बीमारी है, पर हम जो छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, जो पहले एकदम हष्ट पुष्ट रहा करते थे, आज उनकी शारीरिक बनावट बिगड़ती चली जा रही। क्या कारण है आजकल के बच्चों को जो इस तरह से होते जा रहे हैं?
0: बहुत सारे कारण है। एक तो आजकल की जो पेरेंटिंग का तरीका है वो काफी बदल गया है पहले के मुकाबले। तो पैकेट फूड्स और जंक फूड्स का जो प्रचलन है पिछले 10 से 15 साल में आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
2: बिल्कुल,
0: तो बच्चे आजकल आसानी से और बाहर का खाना वो प्रोक्योर कर लेते हैं। माँ बाप भी आसानी से दिला देते हैं, उनको भी लगता है कि बच्चा जिद कर रहा है, क्यों मेहनत करना है, सख्त पेरेंट क्यों बनना है बच्चों के लिए। तो क्यों ना बच्चों को ये चिप्स, बिस्किट, ब्रेड्स, टोस्ट, ये इनका प्रचलन तो ऐसा है कि एक पैकेट खत्म होता है और दूसरा पैकेट घर में आ जाता है।
2: घरों में जैसे राशन रखते थे ना, उस तरह से चीजें रखने लगे।
0: बिल्कुल, तो मोटापा बढ़ने का ये सबसे एक इम्पोर्टेंट रीजन है जंक फूड्स। जंक फूड्स को मैं ऐसे बताता हूं पेरेंट्स को कि सप्ताह से 10 दिन में केवल एक बार अगर बच्चा बहुत जिद कर रहा है तो ही ऑफर कीजिए, नहीं तो इनसे जितनी दूरी आप बना के रखें। और जो कॉन्सेप्ट, सालों पुराना कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन सिस्टम में बैलेंस्ड डाइट का,
2: बिल्कुल,

0: और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरे दिन में जितनी भी डाइट आप दे रहे हैं उसका 50% या उससे कम रखेंगे
1: जी,
0: तो आप पाएंगे कि बच्चे स्वस्थ हैं।
1: ये कितनी उम्र के बच्चों को देना चाहिए?
0: ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर बच्चे के लिए,
1: हर
0: ये एक
1: बच्चे
0: साल
1: के
0: से
1: लिए
0: बड़े बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरह से आप देना शुरू करें तो कभी भी आप पाएंगे कि कुपोषण नहीं होगा। और अगर हम एडल्ट्स के लिए भी बात करें तो लंबे समय तक अगर आप 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम अपने बॉडी वेट के प्रोटीन की मात्रा लेते रहेंगे, आप बलिष्ठ रहेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। बिस्तर पकड़ने की जो टेंडेंसी आजकल 50 की उम्र के बाद हो जाती है,
1: थकान जिसको
0: थकान बोलते हैं, है ना, उससे आप काफी हद तक दूर रहेंगे।
1: कई बार बच्चों में एक और समस्या को देखा गया है कि बच्चे शिकायत करते हैं कि घुटने से नीचे और एड़ी के ऊपर का जो भाग होता है वहां पर इस तरह का दर्द होता है जैसे पेट में मरोड़ उठ रही होती है। तो ये जो दर्द होता है ये किस कारण से होता है और इसका क्या उपाय है?
0: ये मोस्टली ग्रोइंग पेन्स होते हैं, बढ़ते
1: हाँ,
0: बच्चों के जिनको जो दर्द बोलते हैं हम,
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: होते हैं। और ये इसलिए हो जाते हैं कि बच्चे खेलते कूदते बहुत हैं पर उनमें, जैसा कि हमने बताया, कि प्रोटीन की मात्रा उतनी नहीं जा पाती जितनी जानी चाहिए, तो इस तरह के क्रैम्प्स होते हैं।
1: अच्छा,
0: दूसरा कारण है इस तरह के क्रैम्प्स का नमक की कमी हो जाना,
1: अच्छा,
0: क्योंकि पसीना बहता है तो सॉल्ट लॉसेस होते हैं और उतना बच्चों में भरपाई नहीं हो पाती। शाम के समय जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो इनको 1 ग्लास भरकर नींबू पानी जिसमें चीनी और नमक दोनों हो,
1: अच्छा,
0: या नारियल पानी, या कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड अगर आप देंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के दर्द होना काफी कम हो जाएंगे। छाछ आपने अभी मेंशन किया था, वो बहुत अच्छी चीज है। आप बच्चों को खेलने के पहले, खेलने के बाद छाछ दीजिए, बच्चे बहुत स्वस्थ रहेंगे और इस तरह के दर्द काफी हद तक कम हो जाएंगे। अगर ये सब करने के बावजूद दर्द बने हुए हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, हो सकता है कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो रही हो, उसको एड्रेस करने पर ये दर्द काफी हद तक
1: क्योंकि
0: खत्म हो जाता है।
1: जिस समय सूरज की धूप निकली होती है बच्चे उस समय स्कूल में होते हैं, घर तक आते आते सूरज भी अपने घर चले जाते हैं तो उनको विटामिन डी नहीं मिल पाती है।
0: विटामिन डी एक ऐसा पैंडेमिक है अखिलेश जी, जो कि हमारी पूरी सोसाइटी उससे ग्रसित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ों में भी
0: तो
1: ये समस्या देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल, तो जो भी इवन एडल्ट्स अगर दिन में थकान की शिकायत कर रहे हैं, लेजी रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, हड्डियों में दर्द बने रहते हैं, जोड़ों दुखते रहते हैं, विटामिन डी लेवल जरूर से अपने चेक करा के अपने चिकित्सक से मिलें। और ये एक तरह का ग्लोबल पेंडेमिक है हमारी सोसाइटी में।
1: अंकुर जी, इन दिनों बच्चों में टाइफाइड भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये क्यों होता है और इससे कैसे बच सकते हैं?
0: 2 कॉमन कॉजेस हैं टाइफाइड के, या तो पानी से टाइफाइड का कीटाणु मिल जाना, संक्रमण, या फिर खाने की गड़बड़ी से।
1: अच्छा,
0: चूंकि आजकल इतना पाश्चात्यकरण हो गया है, बच्चे बाहर का खाना बहुत खाते हैं, होटल्स रेस्टोरेंट का, वहां से कंटेमिनेशन आ सकता है। अगर आपका पानी, आपका वाटर सोर्स सर्विस नहीं है तो वहां से आ सकता है। टाइफाइड के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है बुखार, जो कि 5 से 7 दिन तक परसिस्ट कर रहा है। आपने वायरल बुखार की तर्ज पे ट्रीटमेंट ले भी लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा, बना हुआ एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक स्टेप लेडर पैटर्न फीवर रहता है टाइफाइड का, जिसमें धीरे धीरे बुखार पूरे दिन में बढ़ता चला जाता है, और पेट दर्द और उल्टियां ये टाइफाइड की कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होते हैं। तो वो जो भी बुखार जो 5 से 7 दिन तक बना हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, बच्चे सुस्त हैं, निढाल है, कब्जियत हो रही है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है अपने पीडियाट्रिशियन से मिलके टाइफाइड की जांच कराएं। ये एक ऐसी बीमारी है कि डिस्पाइट वैक्सीनेशन ये सोसाइटी से कम होने का नाम नहीं ले रही है।
1: ये तो बीमारी से बचने का उपाय आपने बता दिया, क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिससे बच्चे को टाइफाइड ही ना हो?
0: टाइफाइड का एक कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आता है अखिलेश जी, बहुत अच्छा टीका है, 6 महीने की उम्र के अनुपात के बाद हम लोग लगाते हैं इसको, तो 6 मंथ प्लस में टाइफाइड का एक टीका भी लगवा लेते हैं तो भी बहुत अच्छा बचाव है। आइडियल कंडीशंस में 2 टीके 6 महीने और 2 साल की उम्र में। एक कीमत में काफी कम एक टाइफाइड पॉलीसेक्राइड वैक्सीन भी आता है, जिसको हम 2 साल के बाद लगाते हैं और उसको हर 3 साल में लगाना रहता
1: अच्छा
0: है। पॉलीसेक्राइड वैक्सीन भी बहुत अच्छा वैक्सीन है, 2 साल 5 साल 8 साल 11 साल इस तरह से अगर हम लगाते हैं तो काफी हद तक टाइफाइड जैसी खराब बीमारियों से बचाव संभव है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बीमारियों पर आपसे चर्चा हुई और आपने उनके उपाय भी बताए। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि जिससे हर घर का आंगन बच्चे

0: बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहे, उनका बचपन हंसता खेलता रहे और वो निरोग रहें।
1: मोबाइल देना बंद कर दीजिए अपने बच्चों को, बच्चों का बचपन बचा रहेगा। और उनको दोस्त दें, किताबें दें और खुला वातावरण दें जीने के लिए।
0: डॉक्टर साहब के बताए हुए उपायों को जब आप अपनाएंगे तो आपके घर में भी आपका बच्चा हंसता खेलता रहेगा, बीमारियों से आपका घर आंगन मुक्त रहेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया अखिलेश जी।
0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें सेहत की। आज हमने इस कार्यक्रम में सुना मौसमी बीमारियों से बचाव एवं देखभाल, इस विषय पर शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर राय से अखिलेश बाथम की बातचीत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत, जिसमें आज हम लेकर आए हैं प्रेम सिंह, मोहन सिंह, दीपाल पुरिया और मंडली के गाए कुछ मालवी लोकगीत।

0: हिमालवी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे, प्रेम सिंह, मोहन सिंह दीपालपुरिया और मंडली की आवाज़ में हमारे लोक संगीत के कार्यक्रम में।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संदेश से पहले आप सुन रहे थे प्रेम सिंह, मोहन सिंह दीपालपुरिया और मंडली की आवाज में ये मालवी लोकगीत हमारे लोक संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं की आवाज में एक और लोक रचना।

ये मालवी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम सिंह, मोहन सिंह, दीपाल पुरिया और मंडली की आवाज में। लोक संगीत का कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के दौर केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है एक और लोक रचना इन्हीं के स्वर में।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रेम सिंह मोहन सिंह दीपालपुरिया और साथियों के स्वर में कुछ मालवी लोकगीत। समय हो गया है इस कार्यक्रम को संपन्न करने का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कपिल पुरोहित की गाई कुछ रचनाएं।

ये रचना अभी आप सुन रहे थे कपिल पुरोहित की आवाज़ में। इन्हीं के स्वर में आज आपको सुनवा रहे हैं हम सुगम संगीत की कुछ रचनाएं। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं की आवाज़ में एक और रचना।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनील मसूरकर का गायन, राग था अहिर भैरव, संगत कलाकार थे परमानंद गंधर्व और शरद सूर्यवंशी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का है, वाचन स्वर है अभिषेक।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनील मसूरकर का गायन, संगत कलाकार थे परमानंद गंधर्व और शरद सूर्यवंशी। इसी के

0: का प्रशिक्षण भी हुआ। युवाओं से स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, खेल, कौशल विकास और जनसेवा से जुड़े कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन की। प्रदेश के कृषि संकृषि अनुसंधान परिषद की स्नातक काउंसलिंग में प्रवेश का रास्ता आसान हुआ है। अब एबीसी और इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के विद्यार्थियों को भी प्रवेश का अवसर मिलेगा। इससे कृषि स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की राह आसान होगी। और आखिर में बात करते हैं जंगल, वन्यजीव और बच्चों की। वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के तहत सांवरी और छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र के स्कूलों में बीते दिनों निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 120 बच्चों ने जंगल, वन्यजीव और इंसान के साथ प्रकृति के सह अस्तित्व को अपने। छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख था राकेश प्रजापति का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
3: हॉटलाइन

0: नमस्कार श्रोताओं, आ गए हैं हम लेकर आपके पसंदीदा का और इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए तृप्ति लटपटे का नमस्कार। श्रोताओं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। इस नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा और फोन करके हमसे फरमाइश कर सकते हैं आपका पसंदीदा गीत, साथ ही कर सकते हैं हमसे बातचीत। हमारा पहला कॉलर हमसे जुड़ चुका है, देखते हैं कॉल पे कौन है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है?
1: मैं अनिल भंडारी सुल्तानगंज से बोल रहा हूँ।
0: अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं, आप कैसे हो? आपका कार्यक्रम सुन के हम बहुत,
0: आपका कॉल आता है तो हम भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं आपकी आवाज़ सुन के।
1: आपका सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, बहुत खुशी होती है।
0: जी जी बिल्कुल, आप बहुत पुराने, लिए जो सत्कार है आपके लिए, जो प्रेम है वो बढ़ता ही है आपके हर कॉल के साथ।
1: प्रेम आपका भी मिलना चाहिए तो मजा आता है, डबल।
0: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आज आपको?
1: आज 1948 की फिल्म थी बागी करके।
0: जी,
1: इस बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे उस जमाने में चरित्र अभिनेता प्राण
0: जी,
1: और उस जमाने की नायिका थी नसीम बानो, सारा बानो की माँ।
0: जी जी,
1: और ये दोनों कलाकार ने फिल्म बनाई थी, बहुत सुपर हिट फिल्म थी और 25 हफ्ते चली थी उसके एक थिएटर में।
0: जी,
1: उसमें लता का गीत था, 100 बार हमने सुना, लेकिन वो इतना मीठा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। गाने के बोल है, बहारे हमको ढूंढेंगी, हम न जाने कहाँ होंगे, बहुत प्यारा गीत।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत, और इसकी जानकारी भी बहुत अच्छी दी आपने, जो आपके जैसे। जी,
1: संगीतकार इसके थे मदन मोहन।
0: जी जी,
1: और गीतकार
0: की जानकारी है, आपकी पसंदीदा फिल्म और पसंदीदा गीत है, मतलब ये काफी
1: बहुत बहुत प्यारा गीत है। कई बार सुना मैंने, ऐसा लगता कि जिसे गल कल का ही गीत है, इसका गीत सही है।
0: जी बिल्कुल सही कहा, चलिए आपकी पसंद का ये गीत हम भी सुनते हैं, आपको भी सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: आपको भी ये गीत बहुत मीठा लगेगा, उम्मीद है हमको।
0: जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद अनिल जी।

0: वर्षा होती है तब पानी लगा सकते हैं।
1: वर्षा मध्य प्रदेश में इस साल थोड़ी कम हुई है, आशा अनुरूप नहीं हुई है तो।
0: जी जी बिल्कुल कम हुई है परंतु इतने कर सकते हैं।
1: जी चलो, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे आने वाली आपकी फसल के लिए।
0: जी जी और आकर क्या कहें, मन में दिल में रचा बसा है। हम बड़े लंबे समय से आकाशवाणी इंदौर का प्रसारण सुन रहे हैं। जब सभा 8 बजे बंद हो जाया करती थी, 12 बजे शुरू होती थी, 3 बजे बंद हो जाती, फिर 5 बजे युवाणी के साथ शुरू होती, पहले समाचार आते फिर युवाणी आती।
1: कितने सालों से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी?
0: सन 2002 से आकाशवाणी इंदौर का प्रसारण सुन रहे हैं
1: जी,
0: तो लगभग 24 वर्ष का समय हो गया है।
1: क्या बात है,
0: और
1: तो रिश्ता तो बड़ा लंबा और गहरा है आकाशवाणी के साथ आपका।
0: जी जी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी चीज की उसको आदत होती है। जैसे मान लीजिए किसी को खाने में सुबह सुबह वो व्यंजन या अच्छे रेडियो सुनने की, जब तक रेडियो ना सुने तो मन में ऐसा लगता है कि
1: कुछ अधूरा रह गया है। सही कहा जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाए।
0: जी, आज की फरमाइश फिल्म का नाम है चरणों की सौगंध
1: जी,
0: और गाने कर रहा हूँ। इसमें कॉमन बात ये है, इसमें खास बात ये है, अलका याग्निक के साथ किशोर दा डेविड सॉन्ग गा रहे हैं
1: जी।
0: एक नए बीते हुए जमाने का जो सिंगर है, दोनों मिलकर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और हम श्रोताओं का मनोरंजन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही एक अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन रहा है। अलका जी नए जमाने की सिंगर रही हैं और किशोर दा जो है वो पुराने जमाने के, और दोनों ने मिलकर ये गीत गाया है तो बड़ा खूबसूरत ही होगा। आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, शुक्रिया।

0: ये तो का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति लटपटे। आइए लेते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला कॉल। हेलो MH हॉटलाइन।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: अनोखे सिंह।
0: अनोखे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर जी।
0: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज कार्यक्रम में आपको?

मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मर्द टांगे वाला वो मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर

अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम में हॉट लाइन चल रहा है आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। हमें कॉल कर सकते हैं, अपने फरमाइशी गीत सुन सकते हैं और साथ ही कर सकते हैं हमसे बातचीत। हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। इस नंबर के पहले इंदौर का STD कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा। और अगर कॉल नहीं लगता है तो थोड़ा धीरज रखिए, कॉल लगाते रहिए, आपका नंबर एक ना एक दिन जरूर आएगा। अभी देखते हैं कि किसका कॉल लग गया है। हेलो MH हॉटलाइन। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: तृप्ति जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए आपका नाम बताइए।
1: जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद।
0: शेख फहीम मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इतने जोश, ऊर्जा और एनर्जी के साथ हमें कॉल करता है।
1: जी जी, शुक्रिया तृप्ति जी। और हम तो एनर्जी के रहते हैं बच्चों को।
0: ये तो बहुत बड़ा काम है। वो कहते हैं ना कि टीचर को दूसरे भगवान कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को सही मार्गदर्शन देने का काम आप ही लोगों के हाथ में होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल। और राष्ट्र के जो निर्माता और जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, उसके निर्माता आप हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि एनर्जी की बहुत ज्यादा इतनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को संभालने के लिए, उस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आपको ऊर्जावान रहना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: बताइए कौन सा गीत? आप
1: निरूपा राय और पी जयराज की एक फिल्म थी रजिया सुल्तान
0: जी,
1: इसका एक गीत है रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में, ढलती जाए रात कहले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ।
0: जी क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत चुना आपने। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपसे पहली बार बात हो रही है पर आपके खत कई बार मैंने पढ़े हैं
1: जी,
0: और उम्मीद है कि आप ऐसे ही कॉल करते रहेंगे, हमसे बात करते रहेंगे और हम सुनवा पाएंगे आपके फरमाइशी गीत। अभी लीजिए आपके पसंद का गीत, आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद।

0: हेलो एम एच, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है?
1: नंबर 71 से अनिल गोसाले।
0: अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप
1: बस इस समय यहीं से आपसे बात कर रहे
0: जी? कहाँ से बात करें
1: हैं। बैंक में ड्यूटी पे है, वहीं से
0: जी?
1: बात
0: जी
1: कर
0: जी मतलब आप अपने ऑफिस में रहते हुए भी रेडियो सुन रहे हैं और हमसे बात भी कर रहे हैं।
1: रहे। जी, आजकल के साथ में बिना रेडियो के साथ जिंदगी ही चलती है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। बताइए, गीत कौन सा सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का नाम है सुपरस्टार का सिकंदर, आवाज है लता मंगेशकर, आशा भोसले कपूर की, और गीत है
0: चलिए, आपका और समय ना लेते हुए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। इसे एंजॉय करें और ऐसे ही हमें कॉल करते रहे। धन्यवाद।
2: Hey man, you get this sort of music, eh? You like it? You love it.

0: हेलो एमएच हॉटलाइन,
1: हेलो।
0: नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। किससे बात हो रही है?
1: हाँ नमस्कार, मैं राजाराम से राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ दीदी।
0: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद दीदी, बढ़िया है। गीत
0: बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आज दीदी, ये मन पसंद फिल्म का गीत है, देवानंद साहब की फिल्म है ये,
0: जी
1: और इसका गीत है किशोर दा की आवाज में, राजेश रोशन और अमित खन्ना का बनाया हुआ गीत है ये। मनमानी से हरगिज ना डरो, कभी शादी ना करो, ऐसा गीत है ये।
0: शादी का मौसम आ रहा है और आप शादी ना करो
1: अरे
0: ये गीत सुनवाना चाह रहे हैं।
1: वो दीद बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो बज नहीं रहा है, तो
0: जी
1: मैंने
0: बिल्कुल, ये
1: किया
0: थोड़ा
1: आज इसका।
0: भूला बिसरा सा गीत है और ऐसे गीत बीच बीच में बजते तो अच्छा लगता है कि
1: और
0: का
1: किशोर दा की तो बात भी, गीत उनके मजेदार ही रहते हैं, मतलब
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही
1: भी
0: कहा।
1: सुनोगे भले वो 1000 बार सुने ही लगते हैं।
0: किशोर कुमार जी का जो अंदाज था वो बहुत मस्ती भरा था, तो उन
1: उनका मुकाबले का कोई गायक आया भी नहीं है, और ना
0: अपने चलिए आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं हमें कॉल करने के लिए। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सुन रहे हैं आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति लटपटे। अगले कॉलर, हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्ते तृप्ति जी। एकदम बढ़िया है, आप भी अच्छी होंगी ऐसी आशा करते
0: हैं। बिल्कुल, आपका नाम बताइए
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद जी, कार्य से
1: सब कुशल मंगल है, भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है
0: जी। और जीवन में अभी क्या चल रहा है?
1: बस वही रोटी रोजी रोटी चलाने की दुकान खोले हैं
0: जी। जी जी,
1: वहीं बैठ के आपको ज्वाइन करते हैं
0: जी। बहुत सही, बताइए गीत कौन सा सुनवाए आज आपको
1: जी। फिल्म का नाम रहेगा हम तुम्हारे हैं, सनम का टाइटल सॉन्ग।

0: हाँ, पर
1: मन
0: वो पहले भी चलता था वो।
1: जी,
0: क्या
1: फिर भी
0: हाँ,
1: तकरीबन कितने साल हो गए होंगे आपको सुनते
0: वो
1: हुए?
0: होगा जो मेरे को बहुत दिन हो गया, करीब करीब
1: 15-20 सालों से सुन रहे हैं। और कैसे रेडियो और आकाशवाणी की आपको शुरुआत आपने की सुनने की, ये आदत कैसे पड़ी?
0: ये आदत क्या पड़ती है कि पहले हमारे इधर सिर्फ इंदौर स्टेशन लगता था और कोई
1: आपके
0: रेडियो
1: घर
0: नहीं
1: में कोई
0: आता।
1: सुनता था पहले और फिर आपने भी शुरुआत किया?
0: हाँ, हमारे यहाँ सुनते थे, नहीं जब भी तो ट्रांजिस्टर से सुनते थे, वो ट्रांजिस्टर
1: वही होता है।
0: से सुनते।
1: और अब आप जो है फोन पर ऐप के थ्रू
0: हाँ
1: सुनते हैं,
0: हाँ सुनते हैं,
1: लोग
0: हाँ
1: स्टेशन को
0: बिल्कुल
1: सुन
0: सही।
1: सकते हैं क्योंकि बहुत आसान हो गया है।
0: हाँ
1: सबके फोन में कहीं पे भी चलते फिरते या कहीं भी रहते हुए हर कोई जुड़ सकता है।
0: और क्लियरिटी भी बढ़िया भाई आती है बस की बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: हाँ,
1: कहा
0: और नहीं
1: आपने।
0: तो नहीं लग रहा है, अरे तो बाहर निकलो तो अंदर निकलो तो यहाँ नहीं निकले।
1: आते
0: ठीक
1: हैं हमें कॉल करने के लिए, धन्यवाद।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है और यहाँ चल रहा है फरमाइश सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो दोस्त तृप्ति लटपटे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने फरमाइशी गीत, साथ ही कर सकते हैं हमसे बातचीत। हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, देखते हैं कॉल पर कौन है साथ में। हेलो

0: एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार मैडम, दूध के बगीचे से महेश रायकवार।
0: नमस्कार महेश जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया मैडम।
0: बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
1: वो चिराग फिल्म का गाना सुना दीजिए मैडम,
0: चिराग फिल्म
1: तेरी
0: से।
1: आंखों के शिवा
0: जी जी
1: दुनिया में रखा क्या है।
0: बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि आपका कौन
1: मैडम मेरे तो लगते ही रहते हैं मैडम फोन पे मिला,
0: तो मतलब
1: सही बात बोल रहा हूँ मैं मैडम।
0: अच्छी बात है कि आपकी किस्मत से आपका कॉल जल्दी लग जाता है। बहुत सारे लोग हैं करते हैं पर उनका कॉल नहीं लग पाता है।
1: नहीं नहीं मैडम, मेरा कहने क्या उसका आइडिया है मैडम, ये फोन लगाता हूँ ना जब तो उसका मैं डिटेल देखता हूँ क्या।
0: अच्छा
1: जी
0: देखिए, हमारे पास तो हम नंबर नहीं देख पाते। हम जो भी
1: हाँ
0: कॉल उठाते हैं यहाँ पे वो सौभाग्य से उठता
1: नहीं
0: है। आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं। मैं कॉल करने के लिए
1: थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ अब लेते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम कॉल. हेलो एमएच हॉटलाइन.
1: हेलो नमस्ते.
0: नमस्ते जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. किससे बात हो रही है? श्री कैदर जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका. कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, खेजत में है मैडम.

0: ईद के साथ संपन्न होता है फरमाइशी फिल्म गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। तृप्ति को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो,
0: यह आकाशवाणी इंदौर है। अगला प्रसारण कुछ ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: पेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपके साथ जावेद खान और हमारे जो श्रोता हैं, हम अपना फोन नंबर उनको बता देते हैं। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमारे जो पुराने श्रोता हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया हमारे नए श्रोताओं को मौका दें। और अब हम देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन हैं। कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है, मेरी बात किससे हो रही है?
2: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत आपका नियमित श्रोता।
1: तो आप बताइए, क्या हाल चाल है?
2: बहुत ही बढ़िया सर,
1: बस बढ़िया रहना चाहिए। और आप हमारे कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
2: ये आपकी बात आपके साथ और समय में मतलब आकाशवाणी भोपाल नमस्कार है, हर वक्त सुनता रहता हूँ।
1: और ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं
2: जी।
1: तो अब ये बताइए, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
2: रफी साहब की आवाज में कोई भी आप।
1: अब मुझे बता दीजिए कौन सा गाना।
2: रफी साहब की आवाज में कोई भी गीत दे दीजिए आप, ये कोई भी चलेगा अपने को। अपने को तो मतलब श्रोता होने के नाते कॉल जरूरी है।
1: हाँ, तो ये
2: दो महीने बाद में।
1: हाँ, तो अब आपको हम ये गाना सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किस से हो रही है?
1: जी सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम चंद्रेश बोल रहा हूँ, मजमुआ सानी से, जिला रायसेन, तहसील बेगमगंज।
0: अरे वाह, क्या जी चंद्रेश जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल साहब बढ़िया,
0: बस बढ़िया ही होना चाहिए। और सुनाइए कि आपके आसपास का माहौल कैसा? बेहतरीन है?
1: हाँ अच्छा है साहब माहौल।
0: पानी तो चला गया?
1: हाँ पानी तो गया।
0: हाँ, अब क्या खास है
1: साहब? हम कुछ कर नहीं पाते, विकलांग हैं, घर में जो काम है वो करते रहते हैं, चला फिरी का।
0: चला फिरी का बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपने कॉल किया तो आपके मन में कोई सा गाना होगा जिसके लिए आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, बताइए वो गाना कौन सा है? खोज। अच्छा खोज फिल्म का
1: गाने के वो ना याद तुम्हारी जब जब आए।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये नितिन मुकेश की आवाज है, अनजान का। सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये गाना।

0: जहां पर भी हो वो स्थानीय त्याग देना चाहिए श्रीमान जी।
1: अरे वाह क्या बात है, इतने अच्छे विचार आपको कहाँ से ग्रहण करते हैं, आप कहाँ से लाते
0: सर जी
1: हैं?
0: पंचायत विभाग में नौकरी करता हूँ सर जी, पंचायत में नौकरी करता हूँ, उसे मेरे बार कंप्यूटर लैपटॉप पे आते हैं जी।
1: अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, तो आपको याद हो जाते हैं?
0: जी श्रीमान जी, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर याद कर लेता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, और इतनी अच्छी बात है, याद करने से जब हम अच्छी चीजें पढ़ते हैं ना तो
0: जी
1: हमारे मन के विचार भी अच्छे होते हैं, और
0: श्रीमान
1: जैसा
0: जी 1,000 शुभ विचार है मेरे पास, 1,000
1: अरे वाह क्या बात है।
0: करके रखा 1,000 मैंने।
1: अच्छा अब
0: जी
1: ये
0: श्रीमान
1: बताइए
0: जी,
1: कि देखिए आपने सुविचार हैं आपके इतने शानदार विचार होने के साथ में, गाना कौन सा आपने चुना है?
0: श्रीमान जी आप मुझे सुनवा देना, वो है फिल्म का नाम है आगे की सोच। सपना वो सपना, सपना मुझे बना ले अपना, शहर में क्या रखा है गोरी, गांव में आके बसना वो मेरी प्यारी सपना।
1: वाह वाह वाह, किशोर कुमार उष बाल किशनपुरी का लिखा हुआ ये गाना है, राम लक्ष्मण का संगीत है, हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिए अपने
0: जी
1: रेडियो
0: श्रीमान
1: सेट
0: जी,
1: पर।
0: सपना

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। मैं हूँ, आप किससे हो रही है?
1: सहीना भी बोल रहे हैं, हम शहडोल से बोल रहे हैं।
0: शहडोल से बोल रही हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या हाल
1: हाँ, सब अच्छा है सर।
0: और आपके आसपास का मौसम कैसा है?
1: आज का मौसम थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा धुंधला रहा है।
0: जी
1: हाँ, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब ये बताइए हमें कि कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: सलमान खान का कोई सा भी गाना सुनना है। साजन
0: अगर आप फिल्म का नाम बता देंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: का गाना
0: साजन का, चलिए
1: जी,
0: साजन का हम आपको गाना सुनवा रहे हैं। साजन फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: कोई सा भी सुना
0: चलिए
1: दीजिए।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं, पहली बार मिले हैं, ये SP बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ है। सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: जी कहते हैं जो लोग समाज पर अपना कंट्रोल करता है उसे
1: वाह क्या बात है।
0: लेकिन सर जी मैं कहता हूँ कि जो अपने ऊपर कंट्रोल करता है तो अपने अंदर के आत्मा के ऊपर कंट्रोल करता है वो सुपरमैन कहलाता है।
1: वाह क्या बात है क्या बात है, इतनी ज्ञान की बातें आपने।
0: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ और सर जी को सत नमस्कार कर रहा हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया।
0: जावेद सर जी बोल रहे हैं
1: जी? मैं जावेद खान बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी बहुत दिन के बाद रूबरू हुए हैं और आपसे रूबरू होकर जो है हम गदगद हो गए।
1: वाह क्या बात है, हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप कॉल करते हैं।
0: और कहते हैं जो न झुकता है न रुकता है
1: जी,
0: और जो अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान बजाता है वही हिंदुस्तानी कहलाता है।
1: वाह क्या
0: हिंदुस्तानी कहलाता है।
1: वाह क्या बात, भावना हर एक व्यक्ति में होना चाहिए और देश के प्रति इतनी आस्था या ये कहें कि देश के प्रति इतनी मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल, जो हमारे अंदर जो है संस्कार दिए जाते हैं वो सर्वधर्म सद्भाव के संस्कार में हम लोग जीते हैं, उसी में हमारी अनेकता में एकता और वही हमारी राष्ट्रशक्ति है, वही हमारी राष्ट्रभक्ति है।
1: हाँ बिल्कुल, क्या बात कही है आपने। तो अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा वो भारत देश है मेरा। सर जी ये गीत मुझे सुनना है।
1: ये गाना है,
0: मेरे सामने प्रेमदास बाबा जी बैठे हैं और उनके साथ ये गीत को मैं सुनूंगा।
1: ये गाना है सिकंदर आजम का।
0: जी जी जी जी सर जी, तो ये गीत मुझे सुनना है और मैं जो है इस गीत को जो है आपके साथ और अपने प्रेमदास बाबा जी जो हमारे साथ बैठे हैं और उनके साथ ये गीत को मैं सुनना चाहूंगा।
1: अरे बिल्कुल आप सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर लीजिए।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से।
0: जाखड़े साहब, क्या हाल चाल है?
1: हाँ, अभी तो इधर सर गर्मी है बहुत, अभी
0: गर्मी है
1: बहुत अभी।
0: हाँ, अच्छा,
1: गर्म बहुत हो रहा है।
0: वो तो प्रकृति का नियम है, कहीं गर्मी, कहीं धूप, कहीं साया, कहीं बरसात, ये सब चीज़ें तो हैं। और इसी के बीच में जो हर पल आगे बढ़ता रहता है, बस यही तो जिंदगी है,
1: बराबर है,
0: है ना? तो अब आप हमें ये बताइए कि कौन सा गाना आपने पसंद किया है आज सुनने के लिए।
1: हाँ, हमें मोहम्मद रफी के आवाज में वो गाना है, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। आप कौन बोल
1: हेलो
0: रहे हैं?
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम गोपीखरिया तहसील भांडेर जिला दतिया बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से राहुल पाल बोल रहा हूँ।
0: राहुल जी क्या हाल चाल है?
1: सर जी मेरे हाल चाल बहुत बढ़िया है, आप बताएं सर जी आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल शानदार, सदाबहार, बहुत अच्छे।
1: जी जी सर जी, मैं फिलहाल दिल्ली NCR फरीदाबाद में रहकर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और दिल्ली NCR का मौसम बहुत बढ़िया है, धूप खिली हुई है और रात्रि के समय में गुनगुनी सर्दी नहीं पड़ने लगी है, गुलाबी गुलाबी सी।
0: अरे वाह क्या बात है। तो अब ये बताइए कि आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: हमारा हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है, उस ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप के कुछ सदस्य हैं गौतम राय बोले जी, सत्येंद्र कुमार चंचोलिया जी, सतीश रघुवंशी जी, सुनील झा जी, सोनू गौतम जी, भगवान सिंह परमार जी, लोकेंद्र वर्मा जी, तुकाराम यादव जी, इसके अलावा विजय पाटिल जी, राजू यादव जी, फूलचंद पाल जी, मणिराम पाल जी, मोहम्मद वकर फरीदी जी और हैं लोकेंद्र गुर्जर जी के साथ मेहरबान सिंह नागल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: आज मुझे आप सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम रहेगा जीत और गीत के बोल रहेंगे अभी सांस लेने की फुर्सत।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत
1: हेलो
0: है। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर।
0: क्या हाल चाल है
1: सर? खेती बाड़ी करते हैं, सोयाबीन की फसल की कटाई चल रही है हमारे क्षेत्र में अभी।
0: हाँ, सोयाबीन कटना शुरू हो गया?
1: सर कम हुआ बहुत ही, ये मानो पिछले बार से आ गया आज।
0: अच्छा, और
1: हाँ कुछ हो सकता बारिश के कारण हुआ, पहले बारिश नहीं हुई, बाद में फिर रेगुलर हुई, उससे फर्क पड़ रहा है।
0: अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: शाम के समाचार तो परमानेंटली सुनते हैं 7-10। सर सर फिल्म खराब है, मैं तुलसी तेरे आंगन की गीत के बोले, ये खिड़की जो बंद रहती है।
0: ये खिड़की जो बंद रहती है, ऐसी कौन सी खिड़की है जो बंद रहती है?
1: मेरी दुश्मन है ये।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिए अपने रेडियो सेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों भारतीय पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज प्रदेश भर में सेवा ज्योति यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। रिजर्व बैंक के स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की शुरुआत हो रही है। इसमें 34 देशों के 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और 15 राज्यों के 180 घरेलू टूर ऑपरेटर समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित सत्र में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। वहीं उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा भी की जाएगी। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है। स्मृति मंधाना इससे पहले 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 4 एक दिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी कर चुकी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है फिल्म रखवाला से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के शब्द हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। पसंद आप सब श्रोताओं की। इस गीत को पसंद किया है बठेना के श्रोताओं ने। ये हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। सारा गांव के श्रोता भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये है सुजान वर्मा, सौहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। पालदा नाका इंदौर के श्रोता हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी। सिंहपुर बड़ा के श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोताओं की भी यही पसंद है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता अर्जुन और इनके परिवार के सदस्य। बहादुरा नागपुर के श्रोताओं की भी पसंद यही गीत है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं वैशाली शैलेश गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर रखवाला फिल्म का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं घर आंदा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है रूना लैला और भूपेंद्र ने। गुलजार के बोल हैं, संगीत जयदेव का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौली।

0: प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमर गांव डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आबिदा, दानिश अंसारी। और बक्सर से ही हैं राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन इस गीत को सुनना चाहते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, उनकी भी फरमाइश। घरौंदा फिल्म का ये नगमा है।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

ये रंग फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों ने, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। पसंद आप सब श्रोताओं की। बिस्वा से ये पत्र हमें लिखा है नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश, कार्तिक, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति और प्रयाग चौधरी। इनका साथ दिया है मालती चौधरी और खुशी वाणी ने। बक्सर से जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की, गौरीनगर इंदौर से। तो आइए सुनते हैं रंग फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने आपके लिए चुना है आन मिलो सजना फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। पसंद आप सब श्रोताओं की। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण और प्रज्वल के साथ अनुत डेरे इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को पसंद किया है छबड़ा राजस्थान के श्रोताओं ने भी। ये हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। डबरीपारा के श्रोता हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र और जयंती मरकाम। कुछ और श्रोता इसी गीत को पसंद कर रहे हैं, इन्होंने हमें पत्र लिख भेजा है भाटापारा दतरेंगी से। छत्तीसगढ़ के ये श्रोता हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। बिजनौर के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी और बिट्टू भैया। इनका साथ दिया है साजदा रानी और हिना कौसर ने। तो आइए सुनते हैं आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत।

0: आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। श्रोताओं, अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, और यहाँ का पिन कोड है 462002। तो आप हमें पत्र लिखिए अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए, और फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल,
2: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है संग्रहालय से कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। आज सुनिए इसका 6वां भाग।
3: मुल्क जन्नत निशा के इतिहास में वो बहुत अंधेरा वक्त था जब शाह किशवर की फतहों की बाढ़ बड़े जोर शोर के साथ उस पर आई। सारा देश तबाह हो गया, आजादी की इमारतें ढह गईं और जानो माल के लाले पड़ गए। शाह बामुराद खूब जी तोड़कर लड़ा, खूब बहादुरी का सबूत दिया और अपने खानदान के 3 लाख सूरमाओं को अपने देश पर चढ़ा दिया। मगर विजेता की पत्थर काट देने वाली तलवार के मुकाबले में उसकी ये मर्दाना जांबाजियां बेअसर साबित हुईं। मुल्क पर शाह किश्वर कुशा की हुकूमत का सिक्का जम गया और शाह बामुराद अकेला और तन्हा, बेयारो मददगार, अपना सब कुछ आज़ादी के नाम पर कुर्बान करके एक झोपड़े में ज़िंदगी बसर करने लगा। ये झोपड़ा पहाड़ी इलाके में था, आसपास जंगली कौमें आबाद थीं और दूर दूर तक पहाड़ों के सिलसिले नज़र आते थे। इस सुनसान जगह में शाह बामुराद मुसीबत के दिन काटने लगा। दुनिया में अब उसका कोई दोस्त न था। वो दिन भर आबादी से दूर एक चट्टान पर अपने ख्याल में मस्त बैठा रहता था। लोग समझते थे ये कोई ब्रह्म ज्ञान के नशे में चूर सूफी है। शाह बामुराद को यूं बसर करते एक जमाना बीत गया। जवानी की विदाई और बुढ़ापे के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। तब एक रोज शाह बामुराद बस्ती के सरदार के पास गया और उसने कहा,
4: मैं अपनी शादी करना चाहता हूं।
3: वो अचंभे में आ गया, मगर चूंकि दिल में शाह साहब के कमाल और फकीरी में गहरा विश्वास रखता था, पलटकर जवाब न दे सका और अपनी कुंवारी नौजवान बेटी रिंदा की शादी उनसे कर दी। तीसरे साल इस युवती की कामनाओं की वाटिका में एक नौरस पौधा होगा। शाह साहब खुशी के मारे जामे में फूले न समाए, बच्चे को गोद में उठा लिया और हैरत में डूबी हुई माँ के सामने जोश भरे लहजे में बोले,
4: खुदा का शुक्र है कि मुल्क जन्नत निशा का वारिस पैदा हुआ।
5: ये नाजुक सा बच्चा इस मुल्क का बादशाह होगा।
4: बेशक बेगम, मुझे खुशी है अक्ल और जहानत में, हिम्मत और ताकत में ये अपनी दुगनी उम्र के बच्चों से बढ़कर है।
3: सुबह होते ही गरीब रिंदा बच्चे का बनाव सिंगार करके और उसे नाश्ता खिलाकर अपने काम धंधों में लग जाती थी और शाह साहब बच्चे की उंगली पकड़कर उसे आबादी से दूर चट्टान पर ले जाते थे। वहां कभी उसे पढ़ाते, कभी हथियार चलाने की मश्क कराते और कभी उसे शाही कायदे समझाते। बच्चा था तो कमसिन, मगर इन बातों में ऐसा जी लगाता और ऐसे चाव से लगा रहता गोया उसे अपने वंश का हाल मालूम है। मिजाज भी बादशाहों जैसा था। गांव का एक एक बच्चा उसके हुक्म का फरमा बरदार था। माँ उस पर गर्व करती, बाप फूला न समाता और सारे गांव के लोग समझते कि वो शाह साहब के जब तब का असर है।
5: मेरा बच्चा मसूद देखते देखते 7 साल का हो गया है, या अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाना।
3: एक रोज शाम का वक्त था, शाह साहब अकेले सैर करने गए और जब लौटे तो उनके सर पर एक जड़ाऊ ताज शोभा दे रहा था। रिंदा उनका यह हुलिया देखकर सहम गई और मुंह से कुछ बोल न सकी। तब उन्होंने नौजवान मसूद को गले से लगाया, उसी वक्त उसे नहलाया धुलाया और एक चट्टान के तख्त पर बैठाकर दर्द भरे लहजे में बोले,
4: मसूद, मैं आज तुमसे रुखसत होता हूँ और तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। ये उसी मुल्क जन्नत निशा का ताज है। कोई वो जमाना था कि जब ये ताज तुम्हारे बदनसीब बाप के सर पर जेब देता था, अब वो तुम्हें मुबारक हो। रिंदा, तेरा बदकिस्मत शोहर किसी जमाने में इस मुल्क का बादशाह था और अब तू इसकी मलिका है। मुल्क का बादशाह था और अब तू इसकी मलिका है। मैंने ये राज तुझसे अब तक छिपाया था, मगर हमारे अलग होने का वक्त बहुत पास है। अब छिपा कर क्या करूं? मसूद, तुम अभी बच्चे हो मगर दिलेर और समझदार हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बाप की आखिरी वसीयत पर ध्यान दोगे और उस पर अमल करने की कोशिश करोगे। ये मुल्क तुम्हारा है, ये ताज तुम्हारा है और ये रियाया तुम्हारी है। तुम इसे अपने कब्जे में लाने की मरते दम तक कोशिश करते रहना, और अगर तुम्हारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं और तुम्हें भी यही बेसरो सामानी की मौत नसीब हो, तो यही वसीयत तुम अपने बेटे से कर देना, और ये ताज जो उसकी अमानत होगी उसके सुपुर्द करना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। खुदा तुम दोनों को खुशो खुर्रम रखे और तुम्हें मुराद को पहुंचाए।
3: ये कहते कहते शाह साहब की आंखें बंद हो गईं। रिंदा दौड़कर उनके पैरों से लिपट गईं और मसूद रोने लगा। दूसरे दिन सुबह गांव के लोग जमा हुए और पहाड़ी गुफा की गोद में शाह बामुराद की लाश रख दी गई। शाह किश्वर कुशा ने आधी सदी तक खूब इंसाफ के साथ राज किया, मगर किश्वर कुशा दोयम ने सिंहासन पर आते ही अपने अक्लमंद बाप के मंत्रियों को एक सिरे से बर्खास्त कर दिया और अपनी मर्जी के मुआफिक नए नए वजीर और सलाहकार नियुक्त किए। सल्तनत का काम रोज बरोज बिगड़ने लगा। सरदारों ने बेइंसाफी पर कमर बांधी और हुक्काम रियाया पर जोर जबरदस्ती करने लगे। यहां तक कि खानदाने मुरांदिया के एक पुराने नमकखोर ने मौका अच्छा देखकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। आसपास के लोग उसके झंडे के नीचे जमा होने लगे और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ी फौज कायम हो गई और मसूद भी नमकखोर सरदार की फौज में आकर मामूली सिपाहियों का काम करने लगा। मसूद का यौवन अभी आरंभ हो रहा था। उसके दिल में मर्दाना जोश और बाजुओं में शेरों की कुव्वत मौजूद थी। ऐसा लंबा तड़ंगा सुंदर नौजवान बहुत कम किसी ने देखा होगा। शेरों के शिकार का उसे इश्क था। लबो लहजा ऐसा दिलकश पाया कि जिस वक्त मस्ती में आकर कोई कौमी गीत छेड़ देता तो राह चलते मुसाफिरों और पहाड़ी औरतों का जमघट लग जाता था। कितने ही भोले भाले दिलों पर उसकी मोहनी सूरत नक्श थी, कितनी ही आंखें उसे देखने को तरसती थी और कितनी ही जानें उसकी मोहब्बत की आग में घुलती थीं। मगर मसूद पर अभी तक किसी का जादू न चला था। हाँ, अगर उसे मोहब्बत थी तो उसकी आबदार शमशीर से, जो उसने बाप से विरसे में पाई थी। इस तेग को वो जान से ज्यादा प्यार करता था और उसे पूरा यकीन था कि यह तलवार किसी दिन किश्वर कुशा दोयम के सर पर चमकेगी। एक रोज एक शेर का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया।
6: उफ, कितनी सख्त धूप है, भूख और प्यास से जी बेताब हो रहा है। यहां तो ना कोई मेवे का दरख्त नजर आ रहा है और ना कोई बहता हुआ पानी का सोता जिससे भूख और प्यास की आग बुझा सकूं।
3: मसूद हैरान और परेशान खड़ा था कि सामने से एक चांद जैसी सुंदर लड़की हाथ में बर्छी लिए बिजली की तरह तेज घोड़े पर सवार आती हुई दिखाई दी।
6: उफ, भला की खूबसूरत है ये लड़की। पसीने की मोती जैसी बूंदें इसके माथे पर झलक रही हैं। अंबर की खुशबू में बसे हुए बाल दोनों कंधों पर किस बेतकल्लुफी से बिखरे हुए हैं। मेरा दिल हाथ से फिसला जा रहा है। मैंने दुनिया को जला डालने वाला ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा।
3: उसके ऊपर एक सख्ता सा छा गया। यह जवान लड़की उस जंगल में मलिका शेर अफगन के नाम से मशहूर थी। मलिका ने मसूद को देखकर घोड़े की बाग खींच ली और गर्म लहजे में बोली,
7: क्या तू वही नौजवान है जो मेरे इलाके में शेरों का शिकार किया करता है? बतला, तेरी इस गुस्ताखी की क्या सजा दूं?
6: इस सवाल का जवाब मैं खूब देता अगर आपके बजाय यह किसी दिलेर मर्द की जबान से निकलता।
3: इन शब्दों ने मलिका के गुस्से की आग को और भी भड़का दिया। उसने घोड़े को चमकाया और बर्छी उछालती सर पर आ पहुंची। उसने अब तक मलिका के वारों को काटने के सिवाय खुद एक हाथ भी न चलाया था। तब मलिका घोड़े से कूदी और अपना रूमाल फाड़ फाड़ कर मसूद के जख्म बांधने लगी। ऐसा दिलेर और गैरतमंद जवान मर्द उसकी नजर में आज तक न गुजरा था। वो बहुत आराम से उठवाकर अपने खेमे में ले आई और पूरे दो हफ्तों तक उसकी तीमारदारी में लगी रही। घाव भर गया और मसूद का चेहरा फिर पूरनमासी के चांद की तरह चमकने लगा। अब मलिका ने उसके पास आना जाना छोड़ दिया। एक रोज मलिका शेर अफगन ने मसूद को दरबार में बुलाया और ये बोली,
7: ऐ घमंडी नौजवान, अब मेरे इलाके से जा। मैं तेरी गुस्ताखी माफ करती हूँ, मगर आइंदा मेरे इलाके में शिकार के लिए आने की हिम्मत न करना। फिलहाल ताकीद के तौर पर तेरी तलवार छीन ली जाएगी, ताकि तू घमंड के नशे में चूर होकर फिर उधर कदम बढ़ाने की हिम्मत ना करे।
8: जब तक मेरे दम में दम है, कोई ये तलवार मुझसे नहीं ले सकता।
3: ये सुनते ही एक देव जैसा लंबा तड़ंगा हैकल पहलवान ललकार कर बढ़ा और मसूद की कलाई पर तेगे का तुला हुआ हाथ चलाया। मसूद ने वार खाली किया और संभल कर तेगे का वार किया तो पहलवान की गर्दन की पट्टी तक बाकी न रही। ये कैफियत देखते ही मलिका की आंखों से चिंगारियां उड़ने लगी।
7: खबरदार, ये शख्स यहाँ से जिंदा वापस न जाने पाए।
3: चारों तरफ से आजमाए हुए मजबूत सिपाही पिल पड़े और मसूद पर तलवारों और बर्छियों की बौछार पड़ने लगी। मसूद का जिस्म जख्मों से छलनी हो गया, खून के फव्वारे जारी थे और खून की प्यासी तलवारें जबान खोले बार बार उसकी तरफ लपकती थी और उसका खून चाट कर अपनी प्यास बुझा लेती थी। कितनी ही तलवारें उसकी ढाल से टकराकर टूट गईं, कितने ही बहादुर सिपाही जख्मी होकर

0: शेरो शिकार हम जैसी औरतों के लिए छोड़ दे।
1: नमकखोर सरदार की फौज रोज बरोज बढ़ने लगी। पहले तो वो अंधेरे के पर्दे में शाही खजानों पर हाथ बढ़ाता रहा। धीरे धीरे एक बाकायदा फौज तैयार हो गई। यहाँ तक कि सरदार को शाही फौजों के मुकाबले में अपनी तलवार आजमाने का हौसला हुआ और पहली लड़ाई में 24 किले इस नई फौज के हाथ आ गए। और जब मस्कात के मजबूत किले में सरदार नमकखोर शाही किलेदार की मसनत पर अमीराना ठाट बाट से बैठा और अपनी फौज की कारगुजारियां और जंबाजियों के इनाम देने के लिए एक तश्त में सोने के तमगे मंगवा कर रखे, तो सबसे पहले जिस सिपाही का नाम पुकारा गया वो नौजवान मसूद था।
2: मसूद, तुझ पर हमारी पूरी फौज फख्र करती है। लड़ाई के मैदान में सबसे पहले तेरी तलवार चमकती है और धावे के वक्त सबसे पहले तेरे ही कदम उठते हैं। दुश्मन के मोर्चे में ऐसा बेधड़क घुसता है तू जैसे आसमान में चमकता हुआ लाल तारा। तेरी तलवार के वार कयामत बरसाते हैं और तेरे तीर मौत का संदेश देते हैं, इसलिए हम तुझे बहादुरी का तमगा इनाम में देते हैं।
1: किश्वर कुशा दोयम ने बागियों को कुचलने के लिए अब की एक जबरदस्त फौज रवाना की और मीर शुजा को उसका सिपा सालार बनाया, जो लड़ाई के मैदान में अपने वक्त का इस फंदियार था। सरदार नमकखोर ने यह खबर पाई तो हाथ पांव फूल गए। मीर शुजा के मुकाबले में आना अपनी हार को बुलाना था। आखिरकार ये राय तय पाई गई कि इस जगह से आबादी का निशान मिटाकर हम लोग किलेबंद हो जाएं। उस वक्त नौजवान मसूद ने उठकर बड़े पुरजोश लहजे में कहा,
3: नहीं, हम किलेबंद नहीं होंगे, हम मैदान में रहेंगे और हाथों हाथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हमारे सीनों की हड्डियां ऐसी कमजोर नहीं है कि तीर तुपुक के निशाने बर्दाश्त ना कर सकें। किलेबंद होना इस बात का ऐलान है कि हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्या आप लोग जो शाह बामुराद का नाम लेवा हैं, भूल गए कि इस मुल्क पर उसने अपने खानदान के 3 लाख सपूतों को फूल की तरह चढ़ा दिया? नहीं, हम हरगिज किलेबंद नहीं होंगे। हम दुश्मन के मुकाबले में ताल ठोक कर आएंगे और अगर खुदा इंसाफ करने वाला है तो जरूर हमारी तलवारें दुश्मनों के गले मिलेंगी और हमारी बर्थियां उनके पहलू में जगह पाएंगी।
2: मसूद, तेरी हिम्मत और हौसले की मैं दाद देता हूं, तू हमारी फौज की शान है। बेशक हम किले बंद ना होंगे, हम दुश्मन के मुकाबले में ताल ठोक कर आएंगे और अपने प्यारे जन्नत निशां के लिए अपना खून पानी की तरह बहाएंगे। तू हमारे लिए आगे आगे चलने वाली मशाल है और हम सब आज इसी रोशनी में कदम आगे बढ़ाएंगे।
1: मसूद ने चुने हुए सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया और कुछ इस दमखम और कुछ इस जोश खरोश से मीर शुजा पर टूटा कि उसकी सारी फौज में खलबली पड़ गई। 3 घंटे तक बला का शोर मचा रहा, यहाँ तक कि शाही फौज के कदम उखड़ गए और वो सिपाही जिसकी तलवार मीर शुजा के गले मिली मसूद था। सरदारी फौज और अफसर सबके सब लूट के माल पर टूटे और मसूद जख्मों से चूर और खून में रंगा हुआ अपने कुछ जान पर खेलने वाले दस्तों के साथ मस्कात के किले की तरफ लौटा। मगर जब होश ने आंखें खोली और हवास ठिकाने हुए तो वो देखता है,
4: ये सजे हुए कमरे में मखमली गद्दे पर किसने लिटा दिया? फूलों की सुहानी महक और लंबी छरहरी सुंदरियों के जमघट से कमरा चमन बना हुआ है। ये किसका महल है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा?
1: मसूद ताज्जुब से इधर उधर ताकने लगा कि इतने में एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती तश्त में फूलों का हार लिए धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। मसूद देखते ही पहचान गया, ये मलिका शेर अफगन थी। मलिका ने फूलों का हार मसूद के गले में डाला, हीरे जवाहरात उस पर चढ़ाए और सोने के तारों से टकी हुई मसनत पर बड़ी आन बान से बैठ गईं। साजिंदों ने शहनाई पर विजयी अतिथि के स्वागत के सुहाने राग अलापने शुरू किए। इधर तो नाच गाने की महफिल थी, उधर आपसी डाह ने नए नए शिगुफे खिलाए। सरदार से शिकायत की कि मसूद जरूर दुश्मन से जा मिला है। इसके सबूत में कुछ जाली खत भी दिखाए गए और इस कमीनी कोशिश में जबान की ऐसी चालाकी से काम लिया कि आखिर सरदार को इन बातों पर यकीन आ गया। पो फटे जब मसूद मलिका शेर अफगन के दरबार से विजय का हार गले में डाले सरदार को बधाई देने गया तो बजाय इसके कि कद्रदानी का सिरोपा और बहादुरी का तमगा पाए, उसको खरी खोटी बात

0: तो के तीर का निशाना बनाया गया और हुक्म मिला कि तलवार कमर से खोलकर रख दे।
1: ये तेगा मैंने अपने बाप से विरसे में पाया है। ये मेरे पिछले बड़प्पन की आखिरी यादगार है। ये मेरी बाहों की ताकत और मेरा सहयोगी और मददगार है। इसके साथ कैसी कैसी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। क्या मैं जीते जी इसे अपने पहलू से अलग कर दूं? अगर मुझ पर कोई आदमी लड़ाई के मैदान से कदम हटाने का इल्जाम लगा सकता, अगर कोई शख्स इस तेगे का इस्तेमाल मेरे मुकाबले में ज्यादा कारगुजारी के साथ कर सकता, अगर मेरी बाहों में तेगा पकड़ने की ताकत न होती, तो खुदा की कसम मैं खुद ही तेगा कमर से खोल कर रख देता। मगर खुदा का शुक्र है कि मैं इन इल्जामों से बरी हूं। फिर क्यों मैं इसे हाथ से जाने दूं? क्या इसलिए कि मेरी बुराई चाहने वाले कुछ थोड़े से डाहियों ने सरदार नमकखोर का मन मेरी तरफ से फेर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सरकशी पर सरदार और भी गुस्सा हो जाएंगे और यकीनन मुझसे तलवार शमशीर के जोर से छीन ली जाएगी। ऐसी हालत में मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले सिपाही कब अपने को काबू में रख सकेंगे? जरूर आपस में खून की नदियां बहेंगी और भाई भाई का सिर कटेगा। खुदा न करे कि मेरे सबब से ये दर्दनाक मारकाट हो।
0: ये सोचकर उसने चुपके से शमशीर सरदार नमकखोर के बगल में रख दी और खुद सर नीचा किए जब्त की इंतहाई कुव्वत से गुस्से को दबाता हुआ खेमे से बाहर निकल आया। उसने जिल्लत और बदनामी सब गवारा की, तलवार देना गवारा किया, बगावत का इल्ज़ाम लेना गवारा किया और अपने साथियों के सामने सर झुकाना गवारा किया, मगर ये गवारा ना किया कि उसके कारण फौज में बगावत और हुक्म न मानने का ख्याल पैदा हो। उसने खून बरसाती हुई आंखों से दोस्तों को अलविदा कहा और हसरत भरा दिल लिए उठा और एक गुफा में छिप बैठा। और जब सूरज डूबने पर वहां से उठा तो उसके दिल ने फैसला कर लिया था,
1: मैं बदनामी का दाग माथे से मिटाऊंगा और डाहियों को शर्मिंदगी के गड्ढे में गिराऊंगा।
0: मसूद ने फकीरों का भेष अख्तियार किया, सर पर लोहे की टोपी के बजाय लंबी जटाएं बनाई, जिस्म पर जिरह बख्तर के बजाय गेरुए रंग का बाना सजाया, हाथ में तलवार के बजाय फकीरों का प्याला लिया, जंग के नारे के बजाय फकीरों की सदा बुलंद की और अपना नाम शेख मखमूर रख लिया। उधर किश्वर कुशा दोयम का दरबार सजा हुआ है, अंगूरी शराब का दौर चल रहा है। जकायक भेदियों ने खबर दी कि मीर शुजा की हार हुई और वह जान से मारे गए। ये सुनकर किश्वर कुशा के चेहरे पर चिंता के लक्षण दिखाई पड़े। सरदारों को संबोधित करके बोले,
2: आप लोगों में ऐसा दिलेर कौन है जो इस बदमाश सरदार का सर कलम करके हमारे सामने पेश करे? इसकी गुस्ताखियां आप हद से बड़ी जाती हैं। आप ही लोगों के बड़े बूढ़ों ने यह मुल्क तलवार के जोर से मुरादिया खानदान से छीना था। क्या आप उन्हीं पुरखों की औलाद नहीं है?
0: ये सुनते ही सरदारों में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और किसी की हिम्मत ना पड़ी कि बादशाह की दावत कबूल करे। आखिरकार शाह किश्वर कुशा के बुढ़े चचा खुद उठे और बोले,
3: ए शाह जवाबख्त, मैं तेरी दावत कबूल करता हूँ। अगरचे मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बाजुओं में तलवार पकड़ने की ताकत बाकी नहीं रही, मगर मेरे खून में वही गर्मी और दिल में वही जोश है जिसकी बदौलत हमने ये मुल्क शाह बामुराद से लिया था। या तो मैं इस नापाक कुत्ते की हस्ती खाक में मिला दूंगा या इस कोशिश में अपनी जान निसार कर दूंगा।
0: ये कहकर अमीर पुरतदबीर वहां से उठा और मुस्तैदी से जंगी तैयारियों में लग गया। उसे मालूम था कि यह आखिरी मुकाबला है और अगर इसमें नाकाम रहे तो मर जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। उधर सरदार नमकखोर धीरे धीरे राजधानी की तरफ बढ़ता आता था। यकायक उसे खबर मिली।
1: क्या कहा? अमीर पुरतदबीर 20,000 पैदल और सवारों के साथ मुकाबले के लिए आ रहा है। अमीर पुरतदबीर बुढ़ापे के बावजूद अपने वक्त का एक सिपहसालार है। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुर कानों पर हाथ रख लेते हैं। मेरा ख्याल था कि कहीं अमीर एक कोने में बैठे खुदा की इबादत करते होंगे, मगर उनको अपने मुकाबले में देखकर मेरे होश उड़े जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हार से हम अपनी सारी जीत खो बैठे और परसों की मेहनत पर पानी फिर जाए।
0: सबकी यही सलाह हुई कि वापस चलना ही ठीक है। उस वक्त शेख मखमूर ने कहा,
4: ए सरदार नमकखोर, तेरे सरदार और सिपाहियों

0: ने कभी मैदान से कदम पीछे नहीं हटाया। तुमने ये लड़ाई सल्तनत को बढ़ाने के कमीने इरादे से नहीं छेड़ी है। अगर उसके सिपाही जान पर खेलने वाले हैं तो तुम्हारे सिपाही भी सर कटाने के लिए तैयार है। हाथों में तेगा मजबूत पकड़ो और खुदा का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़ो। तुम्हारे तेवर कह देते हैं कि मैदान तुम्हारा है।
1: शेख मकबूर ने तब फकीरी बाना उतार फेंका, फकीरी प्याले को सलाम किया और हाथों में वही तलवार और ढाल लेकर जो किसी वक्त मसूद से छीने गए थे, सरदार रमकखोर के साथ साथ सिपाहियों और अफसरों का दिल बढ़ाते शेरों की तरह बिफरता हुआ चला। आधी रात का वक्त था। अमीर के सिपाही अभी मंजिलें मारे चले आते थे। बेचारे दम भी न लेने पाए थे कि एकाएक सरदार नमकखोर के आ पहुंचने की खबर पाई। होश उड़ गए और हिम्मतें टूट गईं। मगर अमीर शेर की तरह गरज कर खेमे से बाहर आया।
2: बहादुर नौजवानों, ये आराम का वक्त नहीं, मैदान जंग में अपने जौहर दिखाने की घड़ी है। फौरन मैदान जंग में पहुंचे, मैं ऐलान जंग करता हूं।
1: अमीर पुरतदबीर ने दम के दम में अपनी सारी फौज दुश्मन के मुकाबले में कतार बांधकर खड़ी कर दी। यकायक वो टकराए और कुछ इस जोर से टकराए कि जमीन कांप उठी और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। मसूद का तेगा इस वक्त बला का हो रहा था। जिधर पहुंचता लाशों के ढेर लग जाते और सैकड़ों सर उस पर भेंट चढ़ जाते थे। जब दिन निकला तो लड़ाई का मैदान मौत का बाजार हो रहा था। जिधर निगाह उठती मरे हुओं के सर और हाथ पैर लहू में तैरते दिखाई देते थे। यकायक शेख मखमूर की कमान से एक तीर बिजली बनकर निकला और अमीर पुरतदबीर की जान के घोंसले पर गिरा और उसके गिरते ही शाही फौज भाग निकली और सरदार फौज फतेह का झंडा उठाए राजधानी की तरफ बढ़ी।
3: अब मौका है कि मैं अपना जोगिया भेस उतार फेंकूं और ताज तख्त का दावा पेश करूं।
4: मलका शेर अफगन
5: जिंदाबाद जिंदाबाद,
4: मलका शेर अफगन
5: जिंदाबाद जिंदाबाद,
4: मलका शेर अफगन
5: जिंदाबाद।
3: मलका शेर अफगन का नाम हर आदमी की जुबान पर है, मैं तो खामोश रहूंगा। मैं खूब जानता हूं कि अगर मैं अपने दावे को साबित कर दूं तो मलका का दावा खत्म हो जाएगा, मगर तब भी ये मुमकिन है कि सख्त मारकाट के बिना ये फैसला हो सके। मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, ये ख्याल मेरे रगो रेशे में घुला हुआ है। अब्बा की वसीयत मुझे एक दम को भी नहीं भूलती है। दिन को मैं बादशाहत के मंसूबे बांधता हूं और रात को बादशाहत के सपने देखता हूं। ये यकीन कि मैं बादशाह हूं मुझे बादशाह बनाए हुए। अफसोस, आज ये मंसूबे टूट गए और वो सपना तितर बितर हो गया।
1: मसूद के चरित्र में मर्दाना जब्त अपनी हद तक पहुंच गया था। उसने उफ तक न की, एक ठंडी आह भी न भरी, बल्कि पहला आदमी जिसने मलिका के हाथों को चूमा और उसके सामने सर झुकाया वो फकीर मखमूर था। हाँ, ठीक उस वक्त जबकि मलिका के हाथों को चूम रहा था, उसकी जिंदगी भर की लालसाएं आंसू की एक बूंद बनकर मलिका की मेहंदी रची हथेली पर गिर पड़ी कि जैसे मसूद ने अपनी लालसा का मोती मलिका को सौंप दिया। मलिका ने हाथ खींच लिया और फकीर मखमूर के चेहरे पर मोहब्बत से भरी निगाह डाली। जब सल्तनत के सब दरबारी भेंट दे चुके तब तोपों की सलामियां दगने लगीं। शहर में धूमधाम का बाजार गर्म हो गया और खुशियों के जलसे चारों तरफ नजर आने लगे। तख्त नशीनी के तीसरे दिन मसूद खुदा की इबादत में बैठा हुआ था कि मलिका शेर अफगन अकेले उसके पास आई और बोली,
6: मसूद, मैं एक नाचीज तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूं और वो मेरा दिल है। क्या तुम उसे मेरे हाथों से कबूल करोगे?
3: मैं तो मुद्दत से तुम्हारी बर्छी की नोक का घायल हूँ। मेरी किस्मत है कि आज तुम मरहम रखने आई हो।
1: मुल्क जन्नत निशा अब आजादी और खुशहाली का घर है। मलिका शेर अफगन को अभी गद्दी पर बैठे साल भर से ज्यादा भी नहीं गुजरा, मगर सल्तनत का कारोबार बहुत अच्छी तरह और खूबी से चल रहा है और इस बड़े काम में उसका प्यारा शौहर मसूद, जो अभी तक फकीर मकबूर के नाम से मशहूर है, उसका सलाहकार और मददगार है। रात का वक्त था, शाही दरबार सजा हुआ था। बड़े बड़े वजीर अपने पद के अनुसार बैठे हुए थे और नौकर जर्क बर्क वर्दियां पहने हाथ बांधे खड़े थे।

0: एक खिदमतगार ने आकर अर्ज की,
1: मलका शेर अफगन को खिदमतगार का सलाम। दोनों जहान की मलिका, एक गरीब औरत बाहर खड़ी है और आपके कदमों का बोसा लेने की गुजारिश करती है।
2: अंदर हाजिर करो।
1: जो हुक्म मलका है हुजूर।
0: खिदमतगार बाहर चला गया और जरा देर में एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और अपनी पिटारी से एक जड़ाऊ ताज निकालकर बोली,
3: तुम लोग इसे ले लो, अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। मियाँ ने मरते वक्त मसूद को देकर कहा था कि तुम इसके मालिक हो, मगर अपने जिगर के टुकड़े मसूद को कहाँ ढूंढूं? रोते रोते अंधी हो गई, सारी दुनिया की खाक छानी, मगर उसका कहीं पता न लगा। अब जिंदगी से तंग आ गई हूँ, जीकर क्या करूंगी? यह अमानत मेरे पास है, जिसका जी चाहे ले ले।
0: दरबार में सन्नाटा छा गया। यकायक मसूद अपनी जगह से उठा और रोता हुआ रिंदा के पैरों पर गिर पड़ा। रिंदा अपने जिगर के टुकड़े को देखते ही पहचान गई, उसे छाती से लगा लिया और वो जड़ाऊ ताज उसके सर पर रखकर बोली,
3: साहबो, यही मेरा प्यारा मसूद है। ये मुल्क इसका है, ये सारी हुकूमत इसकी है, आज से ये अपने मुल्क का बादशाह है।
0: दरबार में कयामत का शोर मचने लगा। दरबारी उठे और मसूद को हाथों हाथ ले जाकर तख्त पर मलिका शेर अफगन के बगल में बैठा दिया।
4: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का छठा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी बड़ी पूंजी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि श्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों, निर्णय लेने में दृढ़ता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रदेश भर में आज सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। फरवरी 2023 के बाद पहली बार नीतिगत दर में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल मुंबई में आयोजित सत्र में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। वह उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिन का उद्देश्य कपास के वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस साल का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? मुझे मालूम है आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगी। सखियों मैंने आकाशवाणी में पहले सखी संगनी और अब महिला सभा कार्यक्रम के जरिए आपसे बातचीत करते हुए अपने जीवन के खूबसूरत पलों को जिया है। कार्यकाल का यह सफर भले ही पूरा हुआ पर आप सबका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। यादों की झोली में अनमोल पल समेटे हुए आज के बाद मैं अपने इस महिला सभा कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहूंगी पर परोक्ष रूप से ये रिश्ता हमेशा हमारे संग रहेगा। इन्हीं यादों के सफर के साथ सखियों अब हम चर्चा करते हैं आज के विषय की। आज का विषय है समाज का कलंक है अस्पृश्यता। सखियों भारत में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से 8 अक्टूबर तक अस्पृश्यता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज से छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह समाप्त करना और लोगों में समानता के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस बुराई को रोकने के लिए भारतीय संविधान के तहत अस्पृश्यता का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका आचरण दंडनीय अपराध है। ये भारतीय समाज में सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने और देश को विकसित देश बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक पहलुओं पर युवाओं का ध्यान आकर्षित करके सभी वर्गों को स्वतंत्र और सक्षम बनाना है ताकि सभी वर्ग समानता के व्यवहार को अपने जीवन में अपनाते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करें और देश के विकास में अपना सहयोग दें।

0: भी आपने गीत का आनंद लिया, अब हम अपनी चर्चा के इस सफर को वन्य जीवों की ओर ले चलते हैं। और आप सभी जानती हैं कि वन्य जीव और प्रकृति हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए मानव और वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आज इसी विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आपको सुनवा रहे हैं ये भेंटवार्ता वन्य जीव और संरक्षण। श्री लवित भारती वन संरक्षक ग्वालियर से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का ये विशेष वन्य जीव सप्ताह, जो हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। उस अवसर के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वन संरक्षक लवित भारती जी को, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। स्वागत करते हैं सर आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार।
1: वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है और हमारा प्रदेश जो मध्य प्रदेश है, विशेष रूप से हमारा जो क्षेत्र है, ये वन्य जीव संरक्षण के मामले में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
2: वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें पहली चुनौती है कि उनके जो प्राकृतिक हैबिटेट है वो श्रिंक हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड बढ़ रही है, डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा है, तो एक रीज़न वो है। दूसरा, लोगों की नीड के हिसाब से तो फिर भी पर्याप्त है, लेकिन ग्रीड ऐसा है कि किसी के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसको लगता है कि 25 हो जाए, फिर जंगल की तरफ बढ़ते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं, हैबिटेट की क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो रही है, तो इस प्रकार के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे लोग जो इतने परस्पर साथ में रहे आ रहे हैं इतने सालों से, अब उनके साथ चैलेंज ये है कि वाइल्ड लाइफ की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन में भी वृद्धि हो रही है। जब दोनों का टकराव होता है तो कहीं ना कहीं खामियाजा इंसानों को भुगतना होता है किसी फॉर्म में, और कभी वो वाइल्ड लाइफ को भुगतना होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी एक कॉमन ग्राउंड तैयार है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन का मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब वो एक कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हैं। जैसे कोई गांव है जो जंगल से लगा हुआ है, वहाँ पर उनकी खेती जो जंगली जानवर हैं वो कभी उजाड़ देते हैं, नुकसान पहुँचा देते हैं। दूसरा, कभी जंगली जानवर से उनका एनकाउंटर हो जाता है, वो जंगल में गाय को या बकरियों को चराने जाते हैं और वहाँ पे किसी हिंसक जीव से उनका सामना हो जाता है, कई बार घायल कर देता है, कई बार विषम परिस्थितियों में किसी की मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अब उसको आपसी परस्पर उन लोगों का समन्वय बना रहे, किस तरीके से दोनों का सह अस्तित्व हम लोग स्थापित कर पाएँ, ये हमारे लिए एक चैलेंज है और उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास भी करते हैं। लोगों को विभिन्न मंचों के माध्यम से जोड़ते हैं, लोगों की सहभागिता से हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए कदम उठाते हैं, लोगों को रोज़गार से जोड़ते हैं जिससे कि कम से कम वनों पर उनकी निर्भरता हो। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं वो सारे करने की कोशिश करते हैं।
1: जी, एक जो कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन है फॉरेस्ट और उसके कंजर्वेशन को लेकर, कि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि आप अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अब तक की सर्विस में आपको कुछ एक्सपीरियंस या कुछ इंसाइट्स डेवलप हुए हैं कि आप विकास भी कर लें और अपने वन्य जीवों का जो हैबिटेट है उसको भी संरक्षित कर लें?
2: ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आज के परिदृश्य में, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे कि डेवलपमेंट एक नीड है, और आज अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन एक ऐसी पॉपुलेशन है या ह्यूमन एक ऐसी स्पीसीज है जो पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब कंट्रोल कर रही है। सारी स्पीसीज़ का अस्तित्व उनके विवेक पर निर्धारित है, कैसे वो उस स्पीसीज़ को डील करेंगे उनका अस्तित्व उस पर निर्भर करता है। अब जैसे डेवलपमेंट की बात आती है तो हम लोग जो फॉरेस्ट सर्विस है या जो एनवायरनमेंट की लॉबी है या जो लोग भी इसमें काम करते हैं,
1: स्टेक होल्डर्स
2: हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, वो सभी लोग ये चाहते हैं कि विकास ना रुके, लेकिन विकास किस कॉस्ट पे होना है, किस गति से होना है और कितना मिनिमल डिस्ट्रक्शन हो, कितना कम इम्पैक्ट पड़े प्रकृति पर, कि हम लोग प्रकृति को भी बचा लें और डेवलपमेंट भी ना रुके। उसको बचाए रखने के लिए ये सारे उपाय किए गए हैं और यही हमारे सर्विस का एक प्राइम मैंडेट भी है।
1: अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, जैसे कि अर्बनाइजेशन या जो शहरी

0: इलाका है और जो फॉरेस्ट है, वो तो दो अलग अलग, हम मान के चलते हैं कि दो अलग अलग यूनिट्स हैं या दो अलग अलग एंटिटी हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन जंगलों पर ही आधारित है, ऐसे भी कई लोग अभी हैं क्षेत्र में। तो खेतों और बस्तियों के आसपास ये वन्य जीवों की जो मौजूदगी भी होती है, जब ये बढ़ती है तो वन विभाग और जो स्थानीय समुदाय हैं किस तरह संतुलन बना सकते हैं?
1: संतुलन बनाए रखने के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि जानवर ज़्यादा समझदारी दिखाए इंसान की अपेक्षा, जहाँ समझदारी जिसको भगवान ने दिमाग दिया है, और जो जंगलों की तरफ बढ़ रहा है वो इंसान है। जंगल कभी भी जहाँ थे वहीं हैं, और जंगल कम ही हुए हैं, बड़े नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास जो एनिमल्स के पास जो स्पेस है वो कम है, और जब कभी भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो अपने सर्वाइवल के लिए वो बाहर निकलते हैं या फाइट करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इंसान की ही है कि उसे अपने दायरों को सीमित रखना होगा, उसको समझना होगा, एक एनिमल के स्पेस को सम्मान देना होगा। और कभी ऐसा होता है कि एक ही स्पेस पर दोनों ना हो, वही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। अगर एनिमल है तो इंसानों को कुछ रिस्पेक्ट दे के पीछे हट जाना चाहिए, और जहाँ पर ह्यूमन होता है तो एनिमल अपने आप पीछे हट जाता है वहाँ से। तो वो दोनों को एक पारस्परिक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, और एक सहानुभूति की भी ज़रूरत है इंसानों को जानवर के प्रति, क्योंकि वो अपने लिए कहीं भी कोई मंच नहीं है जहाँ पर वो अपनी जाके अपनी पुकार लगा सकते हैं। तो उनके लिए आवाज़ भी हमें बनना है, उनकी समस्या भी हम हैं और समाधान भी हमें बनना है।
0: ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो जानवर हैं उनकी समस्या भी हम ही हैं और समाधान के जो रास्ते हैं वो भी हम ही को निकालने हैं। लवित जी, ये बताइए कि आज के समय में वन्यजीव को लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आपको कौन सी गलतफहमियां लगती हैं कि ये मेजर एक मिथ है लोगों के बीच और जिसको बदलना चाहिए?
1: मिथ को तो ऐसा है कि वो अलग अलग एनिमल्स को लेकर अलग अलग मिथ है। लोगों को ये लगता है कि एनिमल जो भी हिंसक एनिमल है वो सिर्फ नुकसान पहुँचाने के लिए ही है, और वो फर्स्ट होते हैं जो अटैक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमल बहुत ही शाय होते हैं, चाहे वो कितना ही पावर क्यों ना हो। टाइगर के केस में देखें तो टाइगर भी बहुत पावर होता है, लेकिन वो हमेशा ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट या एनकाउंटर अवॉइड करता है। वो कोशिश करता है कि कम से कम इंसान के साथ उसकी आमना सामना हो, कम से कम उसका इंसानों के साथ ऐसी स्थिति बने जहाँ पर कि उसको वन टू वन आना पड़े। वो तो हमारी गलती होती है कि हम जानवर को ना पहचानते हुए कि कहाँ बैठा है, किस झाड़ी में बैठा है, और हम उसके इतने नज़दीक पहुँच जाते हैं कि जो पर्सनल स्पेस है एनिमल का और एक सेफ स्पेस है उसको हम लोग पार कर जाते हैं। उसके बाद जो एक्शन लेता है वो रिटेलिएशन या एक भय में और घबरा कर लेता है। मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं, मैंने ह्यूमन डेथ के भी केसेस देखे हैं, और उसमें हमेशा ये देखा है कि टाइगर ने उसको मारा लेकिन खाया नहीं और वो चला गया। क्यों? क्योंकि उसको एकदम से घबराहट हुई, उसने एनकाउंटर फील किया, उसने अपने आप को ऐसा लगा कि उस पर अटैक होने वाला है, और उसने अटैक करके और उसके बाद चला गया। लेकिन एक इतना पावरफुल एनिमल जब थोड़ा सा भी अटैक करता है, उसके पास पावर इतना है कि एक ह्यूमन बॉडी उसको नहीं झेल पाती है, और बहुत ही दुखद घटनाएँ घटती हैं ऐसी। तो उस सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करने के लिए और मिथ को निकालने के लिए कि एनिमल हमेशा अटैकिंग फॉर्म में ही होता है या अग्रेसिव ही होता है, ऐसा नहीं है। हम अगर उसके स्पेस को या उसके भाव को समझें और रिस्पेक्ट करें तो ये घटनाएं टाली जा सकती हैं। और हम लोगों को यही जागरूकता संदेश भी देते हैं कि जब आपको पता है, हम लोग मुनादी कराते हैं कि यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है या यहाँ पर हाथी आए हुए हैं, तो आप लोग इस क्षेत्र में ना जाएं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ना आए। अगर आप उस टाइम पे उस वार्निंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नहीं जाते तो वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है। और एनिमल हमेशा रेजिडेंट नहीं होता, वो आता है और चला जाता है, एक स्पेस को यूज़ कर रहा है वो। बस एक ही टाइम पे दोनों का होना ज़रूरी नहीं है, या जानकारी नहीं होने के अभाव में उसके इतने पास चले जाते हैं और फिर घटनाएँ दुर्घटनाएँ घट जाती हैं।
0: प्रामाणिक जानकारी अगर किसी को लेनी है किसी एरिया में जाने से पहले, तो वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं?
1: जहाँ पर भी टाइगर रिजर्व हैं या कोई भी एनिमल रिजर्व है, सेंचुरीज हैं, पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे बिना पास के प्रवेश ही प्रतिबंधित है। अगर आपको जाना है तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाइए, आपके लिए बिल्कुल डेजिग्नेटेड जोन है, सफारी है, आपको पूरी सुरक्षा के साथ में, गाइड के साथ में भेजा जाता है। जो जानकार होता है वो आपको जानकारी भी देगा और आपको सुरक्षित वापस भी लेकर आएगा। और जहाँ पर गांव लगे हुए हैं वहाँ पे हम लोग शिविर आयोजित करके गांव वालों को जागरूक करते हैं और उनको जानवर और एनिमल के बिहेवियर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि एनिमल का बिहेवियर कैसा है और आपको किस तरीके से उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना है।
0: कई सारी दुर्घटनाएं उस बीच भी होने की संभावना रहती है जब आप अननेसेसरीली मोमेंट को कैप्चर करने के लिए सेल्फीज और उनके साथ वीडियोग्राफी करते हैं, उस समय भी सावधानियां संभवतः बहुत जरूरी होती होंगी।
1: बिल्कुल, पार्क में आप कभी जाओगे तो आपको देखा होगा कि निर्देश रहते हैं कि किसी भी स्थिति में आपको जंगल में उतरना नहीं है। वो नहीं उतरने का रीज़न यही है कि वो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि एनिमल कहाँ छुपा है, कहाँ बैठा है, हमारी नज़रें कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, लेकिन एनिमल वो हमें सब देख रहे होते हैं और छुप के देख रहे होते हैं। उतरना हमारी सेफ्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप अगर सेफ जोन पे हैं, आप जिप्सी पर हैं, सेल्फी लीजिए, वीडियो बनाइए, आप आराम से सारा सब कुछ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप अपनी सेफ्टी के साथ खुद कंप्रोमाइज़ करते हैं, कई लोग ऐसे देखे गए हैं, मतलब गाड़ी रोक के वो कहीं उतर जाते हैं, एक सेंटर पॉइंट होता है जहां उतरना अलाउड होता है, उसके अलावा कहीं और उतर जाते हैं और फिर ऐसे आप अनवांटेड घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं।
0: लवित जी, हमारे श्रोताओं को, खासकर बच्चे और युवा हमें जो सुन रहे हैं, उनको वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं बच्चों को और हमारे श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगा, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमारी जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है कि हम अपने साथ साथ प्रकृति को भी सुरक्षित रखें और जो अन्य स्पीसीज हैं, जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनको भी हम संभाल कर एक साथ प्रकृति के फॉर्म में इंटरेक्ट करते हुए उनको भी साथ लेकर चलें, जिसमें उनका भी अस्तित्व रहे, हमारा भी अस्तित्व रहे, एक सामंजस्य रहे, आपसी सामंजस्य रहे, एक तालमेल रहे। जैसे हम लोगों को बचपन से ही हमारी स्टोरीज़ में बताया गया कि हमारे दोस्त होते हैं, हाथी मेरा साथी है, हम लोगों को हर एनिमल से कुछ ना कुछ लिंक करके स्टोरीज़ बनाई गई हैं, हमारे देवताओं के सारे वाहन किसी न किसी वन्य प्राणी को लेकर बनाए गए हैं। उसका मतलब ही यह है, संदेश देने का, कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व इन्हीं जानवरों पर निर्भर करता है और हमें सह अस्तित्व की तरफ ही जाना है, जहाँ पर कि वो भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी यही कहती हैं, प्रकृति को साफ रखना है, नदियों को साफ रखना है, वातावरण को और हमारे एनवायरमेंट, जंगलों को सुरक्षित रखना है। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमारे दायित्व भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और हम अपने दायित्वों को निभाएं और प्रकृति और जंगली जानवरों को सुरक्षित रखें, उनके वातावरण को सुरक्षित रखें, उनके रहवास को सुरक्षित रखें, तभी हम एक खूबसूरत हरी भरी पृथ्वी की परिकल्पना कर सकते हैं और सह अस्तित्व की परिकल्पना कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं वो सारी स्पीसीज के लिए है, उसी अवधारणा पर हमें

है कि यहाँ अंधेरा रहता है। सूर्य जैसे तारों के कारण ही प्रकाश रहता है, तो वो भी सिर्फ ग्रहों पर। अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते। सखियों, अंतरिक्ष की जानकारी के साथ अब हम आनंद लेते हैं इस गीत का।

सौंदर्य और दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। रुई से हम घावों और चोट की सफाई करते हैं। कपास के बीजों में विटामिन ई और स्वस्थ वसा होती है, इसलिए इसके बीजों का लेप या तेल रूखी त्वचा को नमी देता है और सूजन और मुहासों को भी कम करने में मददगार है। सूती कपड़ों, बेडशीट, पर्दे, टॉवेल और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को बनाने में कपास के रेशे सबसे अहम माने जाते हैं। कपास के तेल का उपयोग भोजन पकाने और कोलेस्ट्रॉल संतुलन के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार कपास की उपयोगी जानकारी के साथ अब अपने महिला सभा कार्यक्रम से विदा लेते हुए मैं यही कहूंगी, आकाशवाणी से भरा सफर अब पूरा हुआ। खुशियों और

सखियों, कपास के बारे में तो आप सभी जानती हैं, पर आज हम कपास के घरेलू उपयोग के बारे में जानेंगे। कपास के बीज, तेल और रेशे का उपयोग स्वास्थ्य

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भंवर सिंह अहिरवार के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम कुछ भक्ति रचनाएं आपको सुनवाने जा रहे हैं। गायिका हैं साक्षी कुलश्रेष्ठ। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

0: सुनते रहिए माल
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

प्रदेश के साथ लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बंदिश से। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार। और इसके बाद आप सुनेंगे चितचोर फिल्म का गीत यशोदास और हेमलता की आवाजों में। इसके लिए गीत और संगीत रविन्द्र जैन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: हमें भारत के सामर्थ्य को कभी भी कम नहीं आंकना है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने संकल्पों को दुनिया के सामने रखा, तब भी भारत पर अविश्वास करने वाले बहुत थे, लेकिन भारत ने तय समय से पहले ही वो लक्ष्य हासिल किया। ऐसा करने वाला भारत G20 का इकलौता देश है। विकसित भारत का हमारा सपना भी है, हमारा संकल्प भी है और उसे पूरा करने का हमारे पास सामर्थ्य भी है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष की जनसेवा यात्रा पूरी करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा यात्रा राष्ट्र निर्माण और विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की निरंतर यात्रा रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने, अनुच्छेद 370, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना की है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का 7वां संस्करण आज से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के टूरिज्म पोटेंशियल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए भोपाल में शुरू

0: का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जन और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। जिला जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है। 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है। हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत दो संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत धारा, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इनको ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री

और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोब्गे ने कहा, बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
1: रचना डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री

0: क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं
1: आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग आकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
3: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल की घटी से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
2: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
1: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
4: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गत वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
5: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
4: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
6: ड्रोन की वजह से मुझे मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है, इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं उसे ही बुलाया जाता है।
4: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
1: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनात फेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ

0: छारे पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

लता मंगेशकर की है और गीतकार हैं घर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं दिनेश वर्मा और

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमराज फिल्म से हमने लिया है। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया है रवि ने। अनुरोध आप सगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बीबी आरजू जाजोरिया, शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे। ये खत आया हुआ है बक्सर से। लिखने वाले श्रोता हैं मंजू गुप्तना और सानवी गुप्ता। और मलोट कैंप पंजाब से ये चिट्ठी आई है। सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी इसके लिखने वाले हैं। और इसी गीत को पसंद करते हैं बहादुरपुर जिला जलगांव से संतोष दादा सोनार और रविंद्र सोनार। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं हमराज फिल्म का ये नगमा। एक तेरी

तमन्ना ने कुछ ऐसा नवाजा है, एक तेरी तमन्ना ने कुछ ऐसा नवाजा है, मांगी ही नहीं जाती अब कोई दुआ हमसे।

हैं उर्बड़ासे राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने इसे लिखा है। इसी गीत को पसंद करते हैं घंटाघर चौक खंडवा। प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ये चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है, इसे लिखा है श्रद्धानंद।

अभिमान फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया एस डी बर्मन ने और अनुराग राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना योगेश मैंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और बबलू।

मंसूरी, और प्रमिलागंज आलोक कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया शोभा, राहुल ज्योति अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। तुम क्या गए कि सारा जमाना चला गया, वो रात दिन नहीं है, वो शाम और सहर नहीं।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने पूरा करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल की जनसेवा यात्रा पूरी करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल, लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का 7वां संस्करण आज से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से 3 दिन तक सभी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रैपिड एक्शन फोर्स के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेश से मॉनसून की विदाई के बाद भी अगले 3 दिन पूर्वी हिस्से के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:35। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। जन सेवा से देश सेवा, हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुनिएगा आज रात 8 बजे। रात 9:00 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है बंटवारा। ये नाटक सुनिए रात 10 बजे, प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी मिश्रा। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे सौरभ व्रतन राग बिहाग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आज राजेंद्र पटेल के साथ की गई भेंटवार्ता, सरसों की उन्नत उत्पादन तकनीक। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, OTT वेब्स और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

स्टूडियो से समय 4:22, 9:11 लेफ्ट कंप्यूटर प्लेलिस्ट और कार्ड।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: में दोस्तों, आज है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट एक ही फिल्म से। तो आज जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं ना, वो बड़ी ही सिंपल फिल्म है, लेकिन उसके पीछे का जो मैसेज है वो बहुत गहरा है।
1: जी हाँ दोस्तों, नाम भी बड़ा सरल है, किरदार भी बड़े सरल हैं और पिक्चर भी उतनी ही सरल, लेकिन जिंदगी में कभी हार ना मानना, इसका संदेश ये फिल्म हमें बखूबी बता देती है। तो दोस्तों, आप लोग सोचिएगा आखिर ये कौन सी फिल्म होने वाली है।
0: और हाँ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले, जैसा आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछते हैं और इनके उत्तर कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है।
1: और साथियों, दूसरा प्रश्न है, जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में किया जाता है। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी को खोजने हैं और सही उत्तर तो हम आप सभी के साथ कार्यक्रम के अंत में साझा करेंगे ही।
0: बिल्कुल,
1: आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत। ¶¶

0: की कठिनाइयां इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उनके सामने नए लोग आते हैं, नए मौके, अब उनका सपना आखिर में सच बन ही जाएगा।
1: लेकिन इसी सफर में उन्हें ये भी समझ आता है कि दुनिया में ही है, कभी कभी लोग आपके हुनर पर और उस हुनर का गलत फायदा भी उठा सकते हैं।
0: और मौजी और ममता के साथ कुछ ऐसा ही होता है। एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलता है, उन्हें लगता है कि शायद यही वो रास्ता है जो उन्हें आगे ले जाएगा।
1: लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा झटका। जिस चीज को वो अपना मौका समझ रहे थे वही उनके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है।
0: उनके डोग उठा लेते हैं। मौजी को यह एहसास होता है कि अगर उसे अपनी खुद की पहचान बनानी है तो उसे किसी और के नाम के नीचे काम करना नहीं बल्कि उसे अपना खुद का नाम खड़ा करना होगा।
1: और यहीं से जन्म होता है सुई धागा मेड इन इंडिया का।
0: अब मौजी और ममता ये अकेले नहीं है, वो अपने आसपास के उन कारीगरों को भी अपने साथ जोड़ते हैं जिसके हुनर को ये दुनिया शायद भूल चुकी है।
1: और फिर आता है फिल्म एक फैशन प्रतियोगिता।
0: लेकिन सामने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है दोस्तों,
1: सामने है वो लोग जिन्होंने कभी उसे छोटा
0: और ममता ये जीत पाएंगे।
1: क्या उनके बनाए कपड़े उस बड़े मंच पर अपनी पहचान बना पाएंगे?
0: और सबसे बड़ा सवाल, शहर के दर्जी और उसकी पत्नी के हुनर को पहचान पाएगी?
1: इसका जवाब गाने के उस पार जानते हैं साथियों।

0: वो एंगल है या कह सकते हैं जो पैशन है वो ऐड करता है इस फिल्म का संगीत.
1: बिल्कुल
0: इस फिल्म के संगीतकार हैं अनु मलिक, जबकि इनके जो गीतों के जो बोल हैं उन्हें लिखा है वह है चावला गा, खटर पटर, तू ही अहम, सुई धागा, और एक और बहुत अच्छा गाना है वो है सब बढ़िया है.
1: ऐसे मार्गेशा, मुझे चाव लागा जो गीत है वो सबसे खास लगता है, और वो इरे आती नज़दीकी को भी बहुत अच्छे से दिखाता है। एक ऐसे पति पत्नी की कहानी जो मुश्किलों के बीच एक दूसरे को समझना और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं।
0: सही कहा तुमने रा, ये गाना तो मेरा भी बहुत फेवरेट है. और इसी के साथ एक और गाना है खटर पटर. इस गाने में आपको उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और साथ मिलकर मुश्किलों से उसके जो लड़ने का जज्बा है वो आपको इस गाने में जरूर सुनने को मिलेगा.
1: बिल्कुल। और मार्गेशा, हम फिल्म के टाइटल ट्रैक सुई धागा को कैसे भूल सकते हैं? सिर्फ मौजी ममता की कहानी नहीं कहता है, हाथों से भारत की कला और हुनर आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने. और एक और गाना है सब बढ़िया है, ये भी बड़ा ही पॉजिटिव गाना है और हम जब भी आप इसे सुनेंगे तो आपको बहुत फ्रेश फील होगा.
1: बिल्कुल, मौजी की तरह मुश्किल कितनी भी बड़ी हो,
0: जवाब एक ही,
1: सब
0: सब
1: बढ़िया
0: बढ़िया है.
1: है। और शायद यही सुई धागा मार्गेशा।
0: हाँ, क्योंकि फिल्म हमें बताती है कि बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं होती,
1: कभी कभी शुरुआत होती है
0: एक छोटी सी सुई से,
1: एक धागे से,
0: और दो लोगों के विश्वास से,
1: और फिर वही छोटी सी शुरुआत एक दिन आपकी पहचान बन जाती है।
0: तो अगर आपने सुई धागा मेड इन इंडिया देखी है तो शायद आपको मौजी की वो मुस्कान और उसका जो सब सब बढ़िया है ये जरूर आपको याद होगा.
1: और अगर नहीं देखी है तो
0: एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देखिए और ये फिल्म को आप जरूर देखिए. एक फैमिली फिल्म है और अगर आप इसको बच्चों के साथ देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है.
1: बिल्कुल। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये खास सेगमेंट एक ही फिल्म से यहाँ समाप्त होता है।

0: तो इरा, तुम्हें क्या लगता है, योगा सिर्फ एक प्रैक्टिस है या एक लाइफस्टाइल है?
1: मार्गेशा, मुझे तो ऐसा एक लाइफस्टाइल में हमें ऐड कर देना चाहिए हमें, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर युवा साथी की हम बात करें तो कई होते हैं, पढ़ाई, करियर, काम, रिश्ते, खासकर सोशल मीडिया, और भविष्य की भी हमें चिंता तो रहती ही है। ऐसे में शरीर थकने से जाता है हमारा, और उसमें योगा जो है वो एक्सरसाइज करना, थोड़ा खुद को रिलैक्स करना, माइंड जो है उसको, कई सारी चीज़ें वो साथ होते हैं, पढ़ाई, करियर, काम, रिश्ते, खासकर सोशल मीडिया और भविष्य की भी हमें चिंता तो रहती ही है। ऐसे में शरीर थकने से पहले ही अक्सर जाता है हमारा, और उसमें योगा जो है वो एक्सरसाइज करना, थोड़ा खुद को रिलैक्स करना, माइंड जो है उसको

0: कितने हैं ना हमें, मतलब अगर हम मेडिटेशन की भी बात करें तो अगर हम लोग 5 से 10 मिनट रोज अगर मेडिटेट करें तो हमारा पूरे दिन के लिए हम खुद को हम एनर्जाइज कर लेंगे।
1: सही कहा। और अगर इसको मैं समराइज करूँ तो युवाओं के लिए योग फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा फोकस, फिटनेस और बैलेंस और जो स्ट्रेस है उसको कम।
0: बिल्कुल सही कहा मार्गेशा तुमने, और मुझे लगता है कि हमें और हमें सुनने वाले सभी युवा साथियों को भी दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए निकालने चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आप सोचिए कि आप दिन में किस समय योगा कर सकते हैं और कैसे योगा की लाइफ।

0: फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमने सामान्य ज्ञान के कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न पूछे थे। अब समय आ गया है उनके उत्तर बताने का। पहला प्रश्न था कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, और इसका सही उत्तर है काराकोरम।
1: और साथियों, दूसरा प्रश्न था, जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में किया जाता है, जिसका उत्तर है वेस्ट बंगाल। तो हमें उम्मीद है आप सभी ने इन दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर खोजे होंगे। अब इसी के साथ दीजिए इजाजत इरा
0: और मार्गेशा को
1: नमस्कार।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना एक दूजे के लिए फिल्म का गीत, अनूप जलोटा और लता आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। 8 अक्टूबर को समय सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और रक्त कैंसर से संबंधित जानकारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने आशाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील लोकवानी से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर 2026 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 2710221010224। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 2710223024। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर 10:32 से 11:02 तक। विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज और भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अब सुनिए लेकिन फिल्म का गीत सुरेश वाडकर के स्वर में। गुलजार के बोल हैं, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

तब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीप, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और साहू जी का। वो लिखते हैं,
3: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीस में लहूदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी।
3: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है, प्रेरणा भी मिलती है और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
3: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
3: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की ध्वनि अरुणिमा से में जानकारी दी गई जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जा से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
3: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि अपन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूर भरा नमस्कार
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
3: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन

0: से पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, सचमुच दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे।
1: जी, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि जाता है।
0: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है।
0: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गाँव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं।

0: जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैला।
1: महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। एशिया के नोबेल पुरस्कार
1: किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रिया
0: CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन

0: पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं।
1: एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: अंकल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती थी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर पर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ अगर मैं पेड़ आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
0: काली,
1: सच ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम। लेकिन इस चिड़ियों की मौत,
0: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
4: नाना ये क्या सोच रही हो, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
1: बस बस मैं समझ गई।
0: वो सोचने लगी,
1: से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए। और

0: लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
2: सचमुच घर को खूब सजाती चींटी।
3: तो बच्चों, सुना आपने, मक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की सके मदद करना, है ना, ये हमारा अपना काम। तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, हम सब भी करें अपना अपना काम।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक
1: या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का

0: उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
0: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है। पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह! इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
0: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता, सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
2: आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
3: जी सर, इनो अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
2: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार चाहते हैं।
4: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोद रहे होंगे। सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने भर
3: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
4: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
3: क्यों?
4: ताकि वहां भी जमा किया जा सके।
3: हो।
4: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
2: यू मीन वॉटर हार्वेस्ट विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए।
4: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
2: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
4: थैंक यू।
0: साथियों, विश्वेश्वरैया के इस सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जन के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जाम किया था।

0: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
1: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडा उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं।
2: किसने खींची चेन?
3: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे हैं।
4: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियाँ उखड़ी हुई हैं।
2: व्हाट? क्या मजाक है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
4: मान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
2: आइए आइए, देखते हैं।
4: आइए, हम भी चलते हैं।
2: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
4: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
1: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
4: आइए सर, आइए देख लीजिए।
2: अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है। आइए आगे देखते हैं।

0: और मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
1: आइए सर, आइए देख लीजिए।
2: अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है। आइए आगे देखते हैं।

0: बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को
1: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912
0: कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद को कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
1: सन 1955 में कृतज्ञ राम जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन।
0: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी, जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में, कोई तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

मीडियम वेव 4.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कपिल पुरोहित के गाए गीत।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे कपिल पुरोहित के गाए गीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।

0: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
2: पढ़ा कि नहीं?
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड की ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर को सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710-2710-223 और 2710-224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर को और से ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसे आप FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सूचना समाप्त।

प्रेम सिंह मोहन सिंह दीपालपुरिया के गाए लोकगीत इस वक्त आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले वार्ता की। ये संगठन मोबाइल संचालकों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सवेरे श्री विनायक मंदिर में देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पैदा न होने पर अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देश में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगा तो इसके इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए इस सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर

आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। आप सुनेंगे रात 8 बजे, इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:35 पर और रात 9:15 चित्रगीत में। कार्यक्रम चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30। 10 बजे आपको सुनवाएंगे नाटक खामोश सच और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुशील मसूरकर का गायन, राग होगा यमन।

अब एक नजर कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुनिएगा सुबह 6:30। 6:35 पर कार्यक्रम खेती की बातें में कल जानकारी देंगी प्रेरणा पहारे। विषय होगा ठंड के मौसम में पशुओं की देखभाल। 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरितमानस गान। सुनहरे पल कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:20 पर। 8:30 आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। लोक संगीत में सुबह 9:00 कलाकार होंगे सुंदरलाल मालवीय और 9:15 सुगम संगीत में सुनिएगा गुरमीत सिंह द्वंद को। शास्त्रीय संगीत में कल सुबह 9:30 आप सुनेंगे विदुषी श्रुति साडोलीकर का गायन, राग होगा बहादुर तोड़ी। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण किया जाएगा 10:00 भोपाल केंद्र से। 10:05 पर आनंद लीजिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन का। दिन में 11:00 से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण होगा भोपाल केंद्र से। इसमें 11:00 होगा बात आपकी गीत हमारे। 12:00 फिल्म संगीत संग्रहालय से होगा दिन में 12:30। महिला कार्यक्रम दिन में 1:00। लोक संगीत 1:30। सुगम संगीत 1:45 पर और 2:00 फिल्म संगीत और चित्रपट संगीत दिन में 2:30। शाम की सभा में संध्या 5:00 कार्यक्रम युववाणी में आप सुनेंगे शीर्षक संगीत। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत। 6:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 7:30 प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा और 8:00 विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, ये दोनों ही कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। चित्रगीत प्रसारित किया जाएगा 9:15 और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे कल 9:30। कल 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे विदुषी श्रुति साडोलीकर का गायन, राग होगा नंद। ये रूपरेखा थी इस सभा की शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: मीडियम वेव 188.3 मीटर पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBL Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीतों को मुक्त किया। मुख्यमंत्री कल मुंबई में उद्योगपतियों से निवेश पर संवाद करेंगे और प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए तीन दिन विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से लेकर सरकार के प्रमुख के रूप में निरंतर सेवा के 25 साल पूरा होना जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है और भारत अब अपनी बढ़ती ताकत तथा चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए दुनिया में चर्चा का विषय है। उन्होंने अनुच्छेद 370 और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों के समाधान का भी उल्लेख किया।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम 7 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम सीमाओं से परे विस्तार है। आयोजन के 4 प्रमुख स्तंभ सृष्टि, संवर्धन, सशक्त और सुरक्षा है। आईएमसी में 5G, 6G, AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कम्युनिकेशन समेत 9 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कुनू नेशनल पार्क से लाए गए 2 चीतों को वन क्षेत्र में विमुक्त किया। इसके साथ ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभयारण्यों में होने वाली पर्यटन आय में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और बफर जोन के गांवों में होम स्टे विकसित करने के लिए सरकार अनुदान दे रही है।

0: जहां जहां अभयारण्य है, जहां पर्यटक आते हैं और अंदर घूम करके गाड़ी से जो दिखाते हैं, उनसे जो पैसे का कलेक्शन होता है, जैसे इस साल अभी जो कलेक्शन मुझे बता रहे थे 80 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तो 20 करोड़ की राशि अपने ग्रामीण वासियों को बांट करके दी। ये उनका हक है जो उसी अभयारण्य के आसपास अपने गांव अपने घर आबाद करके रहते हैं। वो मकान में एक कमरा दो कमरा तीन कमरा बनाते हैं तो होम स्टे में वो किराए पे भी दे सकते।
1: मुख्यमंत्री ने रहली में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में गिद्ध संख्या आकलन 2026 रिपोर्ट और अन्य सामग्री का विमोचन किया तथा वन्य जीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन कर्मियों को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा में 25 साल पूरे हुए। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारे विशेष श्रृंखला में ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद पे प्रहार की जानकारी दी जा रही है। पीछे एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों में इस नए रुख को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्पष्ट किया है कि सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों का जवाब अपनी शर्तों पर दिया जाएगा और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को सीधे निशाना बनाया जाएगा। भारत ने आतंकवाद को संरक्षण देने वालों और आतंकवादी संगठनों के बीच अंतर करने से भी इनकार किया है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में परमाणु धमकी या दबाव को स्वीकार नहीं करने का संदेश दिया गया है। भारत का स्पष्ट मत है कि आतंकवाद और बातचीत तथा आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। भविष्य में पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत का केंद्र आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होगा। ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ स्पष्ट और नए रणनीतिक रुख को दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार गाजापुर से मैं अजीत पाराशर।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल मुंबई में फार्मा मेडिकल डिवाइसेस समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले संवाद में मध्यप्रदेश के क्षेत्र विशेष औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश अवसरों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर रहेगा। प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से तीन दिन तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि फॉर्म 6 के अलावा किसी मतदाता से घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान और प्रोजेक्ट संकल्प के तहत वृहद करियर कार्यशाला आयोजित की गई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड आने वाले समय में पर्यटन की संभावना को देखते हुए शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम डोढ़ा में भूमि लीज पर देगा। शिवपुरी जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आज कल और 9 अक्टूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर आज जिला स्तरीय सेवा ज्योति संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे देश के साथ ही सीहोर जिले में भी किया गया। मंदसौर में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गयी। विभिन्न मार्गों से यात्राएं जिला मुख्यालय पहुंची, जहां सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्बोधन लाइव देखा और सुना गया। राजगढ़ में राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कल सारंगपुर सिविल चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सतना बीटीआई मैदान में आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा ज्योति यात्रा के जिले के कार्यक्रम में जिला विकास पुस्तिका का वितरण भी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ग्राम लक्ष्मी की चौपाल पायला सभी भाई बहन नकत रप्ति बहन की राम राम। भाई बहन नोन अपन लोकगीत भी सुनांगा, वात न भी करांगा, न जानकार से जानकारी भी लेवांगा। तो आज अपन बात करांगा कि सुकन्या समृद्धि योजना काई छे, अने साथ साथ अपन बात करांगा कि विश्व दृष्टि दिवस आज का दिन क्यों मनाया जाए, न को उद्देश्य काई छे। सबसे पहले अपन बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की। तो बेटी बचाओ न बेटी पढ़ाओ अभियान का तहत सुकन्या समृद्धि योजना को आयोजन करो गए थो 2015 में एक शुरू करो। एकालिए काई करनू कि अपनी 10 साल की कई की भी अपनी घर की छोरी होए ओक पोस्ट ऑफिस में या सरकारी बैंक में को खातों खोला देनू, ओका में अपना क प्रति महीना या प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि जमा करनू रहे, जेको कि अपना का बच्ची जो अपनी 21 साल की हुई जाएगा या ओका जो 18 साल की हुई जाएगा तब तो 15 साल तक अपना का जब 10 साल की छोरी छे ओका तव से लेकर 15 साल तक अपना का एक निश्चित राशि जमा करनू, जेका अपना का 8.2% दर का हिसाब से काई मिलेगा ओको फायदो मिलेगा। जसो कि अगर अपन 1,000 रुपया प्रति महीना जमा कराएं तो 21 साल बाद लगभग अपना का 5,54,612 रुपया अपना का मिलेगा। अन जब पूरी 18 साल की हो जाए तो अपन थोड़ी सी राशि निकाली कर ओकी पढ़ाई का लिए करी सकें। तो बस अपना का अपनी कन्या का अच्छा पढ़ाऊ न। अब अपन बात करेंगे कि भाई विश्व दृष्टि दिवस कई छे, पर ओका पहले सुनी लेवाजो लोकगीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: भाई बहनों, जसो क्यों कह रही थी कि बात अपन करांगा कि विश्व दृष्टि दिवस कई हो, तो विश्व में कई छे कि आंख न के लेकर जो आंख न की बीमारी न छे ओका प्रति जागरूकता लाना के लिए, मतलब कहीं की ऐसी बीमारी न हो जेका से कि धीरे धीरे करी का आंख की रोशनी पूरी तरह से चली जाए, तो ओकी जानकारी जागृत करने के लिए पूरा विश्व में आज को दिन यानी 8 अक्टूबर जो छे विश्व दृष्टि दिवस का रूप में मनाया जाए। एक मुख्य उद्देश्य छे कि लोग न के जागरूक करनू कि आँख न जो छे हमारा शरीर को एक ऐसो अंग छे जे कि देख रेख करनू बहुत जरूरी छे। अगर जरा सी भी अपना का कई ऐसी गड़बड़ लगे अपनी आँख में अपनी दृष्टि में या कई का ऐसा माहौल में अपन रहता हो कि जहाँ पर धूल धमासो खूब होते हो, तो अपना का अपनी आँख की सुरक्षा करनू चाहिए। अने अगर कई तकलीफ हो तो की जाँच जरूर करानू चाहिए। अने आँख का लिए घरेलू नुस्खा भी लाई जाऊँ अने घरेलू व्यंजन भी लाई, पर ओका पहले अपन सुनांगा भेट वार्ता जो कि छे रवि फसल में सामयिक कार्यक्रम जिना विषय पर उन्नत कृषक मांगीलाल कुलश्रेष्ठ नलखेड़ा से आयल छे अपना पास ने, उनका से बात कर रही बहन बिंदु भाटे, तो सुनांजा भेट वार्ता।
2: अभी हमारा घना सारा किसान भाई बहन जो छे के रवि की फसल की तैयारी में लग गया, कुछ न तो वावणी करी नाखी पर कुछ छे तो एक ही तैयारी में छे। भाई अपनी कोई भी खेती कोई कहाँ की भी फसल लेवा तो शुरुआत खेत से हो न खेत की माटी से हो। सबसे पहले तो मिट्टी परीक्षण की बात आवे तो मिट्टी परीक्षण कसो कई करनो, ओका बाद एक एक कदम हम आगे बढ़ाए और इस तरह से हम फसल का अपनी जो छे जो भी हम फसल लेनो अपन तैयारी करी लेवा। तो आज असज हमारी चौपाल पायल छे भाई मांगीलाल कुलश्रेष्ठ जी जो की नलखेड़ा

0: पास ही आया है। तो भाई सबसे पहले तो हमारा किसान भाई बहन का ये बताओ कि आप अपनी जो खेतीबाड़ी करो तो अभी रवि फसल में कहाँ का सामयिक काम करी रहा है,
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: हमारा
1: जी,
0: किसान भाई बहन भी जाना।
1: जी, तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि रवि फसल की बात चल रही, तो रवि फसल के लिए हमने हमारे खेतों को अच्छी सी हाकवाई किया।
0: हाँ,
1: जिसमें हमने कल्टीवेटर, कल्टीवेटर के साथ साथ रोटावेटर, रोटावेटर के बाद में हमने बड़ी जो सीडिल है उससे हमने बुवाई किया है।
0: अच्छा।
1: और बुवाई का काम अभी जारी है। और हमने अधिकतर हमारे क्षेत्र में जो नलखड़ा क्षेत्र है, संतरा के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, सारे भारत में प्रसिद्ध है।
0: जी,
1: तो उस संतरा की खेती के साथ साथ एक और हमें वरदान मिला है, जिसका कहते हैं अटल बांध, अटल सागर बांध।
0: अच्छा।
1: और उस अटल सागर बांध के कारण पानी की पर्याप्तता हो चुकी है, इससे हमारे क्षेत्र में गेहूं की फसल बहुत ज्यादा हम लगा रहे हैं। और रहा सवाल मृदा परीक्षण का, तो मृदा परीक्षण के लिए हमारे आगर मालवा में भी, नलखेड़ा में हमारा विभाग है और हमारे अधिकारी आते हैं और परीक्षण करते हैं। तो अभी हमें उन्होंने जिंक, पोटास, कल्चर और डीएपी, तो इसके साथ साथ हमने घर पे जो कृमि होते हैं,
0: अच्छा,
1: कृमि से भी हमने खाद बनाया, जैविक खाद,
0: केचुआ
1: वाला खाद। और ये बात तय है कि जितनी भी हम रासायनिक उर्वरक जो डाल रहे हैं कृषि में, इससे हमारी जमीन निरंतर ऊसर होती जा रही। तो हम सब मिलकर प्रयास करें, क्योंकि मैं भी एक प्रयोगी किसान हूं और निरंतर मेरे पशु भी हैं, जो पशु खाद का मैं उपयोग करते हुए, और सब लोगों को, सभी किसानों को मैं चौपाल पे बताता हूं कि भाई हम रासायनिक उर्वरक से बचने का प्रयास करें और अधिकतर जैविक खेती की ओर आए, ताकि जो फसलें आएगी वो हमारे लिए पौष्टिक तत्व देगी।
0: हाँ।
1: और दूसरी बात, उसका बाजार का मूल्य भी हमें अधिक मिलेगा।
0: हाँ।
1: उसमें चमक होगी। और हमारी माँ है ये धरा, ये वसुंधरा, ये जमीन तो हमारी माँ है।
0: बिल्कुल सही कहे आपने कि ये हमारी माँ है। और एको स्वास्थ्य हमका अच्छो रखनो, क्योंकि देखो एक माँ अपना बालक ना का खूब अच्छा सी पाला पोसज, तो
1: जी।
0: ये अपना का एक तरह से पाला ही रहे, क्योंकि वो अपना का इतनी अच्छी फसल दे, तो हम भी उनको स्वास्थ्य को ध्यान रखना हमारो कर्तव्य बने। तो आपने जैसा मिट्टी परीक्षण करवाया, तो उसका हिसाब से जो वहाँ की मिट्टी परीक्षण जांच करने का बाद में जो वहाँ की तो निर्णय निकले हो, वहाँ का जो परिणाम थो, उसका आधार पर आप फसल बाओज के अपना हिसाब से मतलब फसल को चुनाव करो।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहली जो पारंपरिक खेती होती थी हमारे पूर्वज, तो वो बेचारे कोई मिट्टी परीक्षण होता नहीं था, तो ऐसा करते रहते थे। परंतु आजकल तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
0: हाँ।
1: और चूंकि अधिकारियों का आवागमन बना रहता है, और अपनो भारत तो यूं ही कृषि प्रधान देश है। जी, और कृषि प्रधान देश है तो हम सब जागरूक भी हो चुके हैं, शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा हो चुका है, किसान भी जागरूक है। आजकल ये मोबाइल भी ऐसा चला हुआ है जिसमें सारी किसान की ऐप डली हुई है, कृषि की ऐप डली हुई है,
0: बहुत सारी जानकारी घर बैठा
1: मिल जाती है। और हम, आपने जो प्रश्न किया उस हिसाब से ही हम अधिकारी के मार्गदर्शन के अनुसार ही हम कृषि बो रहे हैं।
0: अच्छा, तो फसल चक्र को भी उपयोग करता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि फसल चक्र का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, तो जैसे हम रोज एक ही एक रोटी खाते हैं।
0: हाँ।
1: तो उससे क्या हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा?
0: सही बात कही कि एक अजय खाड़ू खाए ना जीव उग गई जाए,
1: है ना,
0: तो
1: वही बात है,
0: बदलाव होना जरूरी
1: है ना। जैसे दाल बाटी है तो फिर कभी चूरमा है तो कभी भात है, ऐसे ही हम कृषि को भी यही कर रहे हैं। गेहूं, गेहूं के बाद कभी रायड़ा, रायड़े के बाद मसूर है, मसूर के बाद में हम दूसरी फसलें जैसे मटर है।
0: हाँ।
1: ऐसा फसल चक्र को बना रहे हैं।
0: अच्छा। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात आप कही कि फसल चक्र का आप अपना।
1: जी, जी, जी,
0: तो जब आपने अभी कई गेहूं लगाया होगा।
1: हाँ,
0: कि और चना वगैरह भी लगाओ?
1: हमने गेहूं भी लगाए हैं, चना लगाते थे, पर चना हमने इसलिए नहीं लगाए हैं, अटल सागर बांध जिसको कुंडालिया डैम बोलते हैं।
0: हाँ।
1: उसके कारण से वन्य प्राणी जैसे कि नील गाय, जैसे कि हिरण, जैसे कि माल सुअर, इतने आए कि अन्य फसलों को तो हमें रवा तवा कर दिया,
0: चौपट करी,
1: चौपट कर दिया है उनने। इसलिए हर किसान बेचारा, एक तो रात को यदि वो जाता भी है, उनका सामना करता है, तो वो सामना करते हैं,
0: मतलब उनकी इतनी संख्या बढ़ी गई,
1: इतनी संख्या बढ़ गई है, और हम सुरक्षित भी रहे। छोटे छोटे बच्चे, माता बहने बेचारी, वो भी जब जाती है खेत पे तो भी डरती है।
0: सही बात है, वन्य जीव छे, हमको उनका भी संभाल ही ना रखना।
1: बिल्कुल,
0: अपनी खेती बाड़ी का भी संभाल।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारे दो ही तरफ कर्तव्य बढ़ेंगे, हम दो ही तरफ ध्यान रखा।
1: वही।

भाई बहन नोन, बड़ो अच्छो लोकगीत सुनियो अपन ने शंकरलाल धोलप्रिया की आवाज में, न उनका साथी न को गाय लो। हाँ, एक जरूरी बात अपन या करांगा कि अपना जो आँख छे ओका लिए अपन घरेलू नुस्खो असो कई करा कि ओकी रोशनी अच्छी रहे और अपना का अच्छो अच्छो देखाए। तो एक लिए कई करनू जो अपना का सौफ, बदाम और खसखस, इन्हें तीनों को घरेलू नुस्खो छे कि सौफ छे आधा चम्मच तो खसखस छे एक चम्मच अने वहाँ बादाम पीसेली दो चम्मच। इन सब का मिले लेनुज अने इनको कई करनुज इनका रोज एक चम्मच, यानी इन तीनों का मिले का अगर एक इनको एक चम्मच बने का अपना का सुबह से खाली पेट खाणुज अने पानी पी लेनुज। ओका से कई होएगा कि सौफ अपनो रक्त शुद्ध करज, बादाम जो छे वो अपनो दिमाग ने नस ने तंत्रिका तंत्र का मजबूत करज, अने खसखस जो छे वो अपनी आँख की रोशनी का बढ़ावने में आँख न की जो नस न हो ओका मजबूत करज। तो अगर अपन एको जो सेवन रोज कराएं तो अपनी आँख न का कई की परेशानी नहीं होती है, अने कदी अपन मोतियाबिन को ऑपरेशन भी हुई जाए नहीं ओका बाद में भी ये नुस्खो अगर अपनाओगे तो तुमका आँख न में खूब आराम भी लगा। बात तो सच्ची रही अने अच्छी भी रही। अब एक जरूरी बात तुम्हारा भाई बहन ने हमारे से कही थी ना, हमने अभी तक कही नहीं। वह कही छे कि अभी तो चल रहे पितृपक्ष, यानी अपना जो पुरका छे वो अपना का आशीर्वाद देने का लिए आयल छे, तो अपन उनको आशीर्वाद ले लेवाएं। असो कसो लेवांगा, हेमलता उपाध्याय का गायला लोकगीत का माध्यम से। तो अपन अपना पुरखा न का याद कराएं न सुनाएं जो लोकगीत।

अभी ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में, और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ

0: दो खास अतिथि आज आमंत्रित है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट एमपी नथानियल, जो सीआरपीएफ के पूर्व आईजी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट एमपी नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
1: थैंक यू।
0: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू है?
1: तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जिस सुधार की आप बात कर रही हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या हैं? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स $1.5 trillion, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। टुडे देयर आर 3 मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जो बंद हैं, बाबल मंडब, हॉर्मुज, ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से, लगभग उस समय से, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं, अभी भी पीएमओ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है। इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द CDSDMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है, उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
0: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल,
1: थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि अभी देखिए, the services exist in silos, army, navy, air force. So there are army commanders for each area, there are naval commanders for each area, there are air force commanders for each area. Theatrization का मतलब है कि आप दो या तीन theaters बनाएं, एक theater which looks at the western horizons, so पश्चिमी तट की ओर, एक at the eastern horizons या China, western horizons Pakistan and beyond, और एक maritime theater. और दो तीन, जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर, बट वंस यू से वेस्टर्न हराइजन्स, अब उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इनटू दिस वन थिएटर कमांड। अब देखिए, CDS इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो इट्स नॉट आर्मी टेकिंग इट्स प्लान, नेवी टेकिंग इट्स प्लान, इट इज इंटीग्रेटेड प्लान विच द CDS टेक्स। सिंदूर में देखिए क्या हुआ। So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the integrated plan to the prime minister. और इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है, पृष्ठभूमि है। So that is optimizing all available resources for best combat outcomes.
0: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उनका जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम डिफेंस फोर्सेज में देख रहे हैं?
1: आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए क्यों, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द CDS, यू हैव अपॉइंटेड अ CDS, बट अगर आप इसकी तुलना करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अ परमानेंट चेयरमैन इन 1949, उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स। तो आपने गल्फ वॉर वन में सुना होगा, वी हैड नेटवर्क सेंट्रिसिटी। गल्फ वॉर टू में वी मूव टू इंटीग्रेशन, वेयर अ टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16।
2: आप देखें उस

0: उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन. और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब. So those are the steps. Today we are in what we call coordinated jointness.
1: Yes.
0: Then you have to go to integration, then cross-pollination, then civil-military fusion, which is whole of government. मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ. एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, it has picked up an American called Omar Yagi, Nobel laureate in chemistry. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI डिपार्टमेंट है फॉर एडवांस मटीरियल्स, जिसमें PLA का 30% representation. तो academia, PLA and Nobel laureate kind of talent. That is civil military fusion. तो ये अभी एक लंबा सफर है. CDS पहला पड़ाव था, integration, theatrization दूसरा पड़ाव होगा. And that is the way we will grow if we have to become a power of consequence. But जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, this is the beginning of that journey. और देखिए इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ढांचा था
1: जी,
0: उसमें एक ये महत्वपूर्ण फेरबदल है. देखिए पहले क्या होता था कि अ सर्विस चीफ वुड गो टू द रक्षा मंत्री थ्रू द डिफेंस सेक्रेटरी. सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट द सर्व सोल्जर कुड गेट टू हिम ओनली थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक एयर. नाउ इट इज इक्वल्स, डिफेंस सेक्रेटरी, CDS, बोथ, सो दैट द रक्षा मंत्री गेट्स द बेस्ट एडवाइस. इसका दैट इज द लॉजिक. और जैसे मैंने कहा, इसके जो अब हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन की ओर अग्रसर है
1: जी,
0: और इसके मील पत्थर क्या होंगे, प्रतिभा, टैलेंट, मैंने उसका एक उदाहरण दिया आपका, इनोवेशन, नवाचार. टुडे यू कांट हैव आउटडेटेड प्रोसेसेस. देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, ड्रोन्स, AI, ये सब हकीकतें हैं. एंड अलॉन्ग विद इनोवेशन, डी रेगुलेशन. जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, he said, private sector or startups ke silsile mein he was telling us that release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure, niyamo ka jaal. So CDS DMA is a symbol, but iske piche gehra soch hai.
1: Sorry to interrupt, but आपको लगता है कि शायद उनकी दूरदर्शी सोच थी, आप कह रहे हैं कि 2014 में ही इस तरह का जो सोच है वो सामने आ गई थी, तो in time it was taken, जो decision.
0: It is a revolutionary step in the civil-military relationship. Mm-hmm. It is building of trust between the civilian political leadership and the military. So there are complex factors here. दूसरा जो केंद्र बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस. देखिए हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था, इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs. अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, द कैरेक्टर ऑफ वॉर, उसमें आमूल परिवर्तन हुआ है. सो टुडे इफ यू सी यूक्रेन वगैरह में पॉलीमैथ्स जो है, उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं. आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ, it is such a powerful military, there is no military which can project power two oceans away. But abhi ek report nikli hai Washington se ki why the US has not delivered an epic fury mein uska kaam itna acha nahi raha, because it was slow to learn the lessons of ukraine se jo seekh thi, drones, AI, wo nahi kar paye. So their US navy, usne Iranian navy ke 160 ships ko dhwast kar diya, but it was not small enough, agile enough, autonomous enough to operate in the strait.
1: तो आप जो चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
0: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है, you need the innovation, agility of the private sector and startups. अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, because of regulation, process, procedure, HAL is promising you AMCA only by 2030. अंग्रेजी में एक कहावत है that today क्या हो रहा है, that multi-billion dollar capacities which are delivered in 10 years, they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks. Ukraine mein ye ho raha. So this is the reason why we have to move towards private sector and startups. Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke saath, to meri wo jo kya kehte hain, professional career, vyavsayik jo zindagi hai, uska ant ho jata. We are not supposed to interact. Aaj aap dekhiye, jo hamare nausena adhyaksh hain, Admiral Swaminathan, वो सार्वजनिक मंच से, he was telling the CEO startups, youngster, कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम प्रोग्रेस. इतने मैं आपको गिना दूं, देखिए सर्वम, AI, गैलेक्साई, मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी,

0: Punyan, turbofan engine, third eye tech, new space. These are young boys and girls.
1: Reliance को जो बढ़ावा मिला है,
0: हवा मिला है
1: जी
0: स्टार्टअप से, ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप. रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द फिफ्थ जनरेशन फाइटर बट द सिक्स्थ जनरेशन फाइटर. तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है.
1: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते
0: आज
1: हैं.
0: really. जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड्स उसमें 42 शिप्स का निर्माण हो रहा है वॉरशिप्स. बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज चाइना हैज गॉट 500 शिप्स. बट ये दो तीन चीजें जो हैं आत्मनिर्भरता इन डिफेंस जिसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है स्टार्टअप्स का प्रवेश हुआ. और एक आखिरी चीज मैं बोल दूं
1: जी बिल्कुल
0: हमारी जो सामरिक सोच है जो नीति है उसमें भी देखिए नए स्तंभ. आप देखें ये जो आतंक पर प्रहार हुआ और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं. एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है कि देखिए आपकी जो सामरिक नीति है अगर उसमें आप आतंक उसका केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे. एंड इट इज जस्ट नॉट अ फ्रेज वी हैव डन इट. हमने कैसे किया चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा. आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया. जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी कि साहब मत करिए. फिर आपने किया पुलवामा इस बार हमने कहा पीओके नहीं पीओके बाहर बालाकोट में आपको जाके मार. और फिर भी जब आप नहीं माने और आपने पहलगाम किया तो हमने सिंदूर किया. आप 10 मई 2025 का स्मरण करें पाकिस्तान डिफेंसेस ले बैटर्ड इट्स सॉवरेनिटी ले शैटर्ड. हमने तो ये जो टारगेट्स है ना 40-50 टारगेट हमने तो सिर्फ मैप्स पे मारे थे. पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी रायविंड नूरखान. नूरखान 1.5 किलोमीटर था जीएचके से. पाकिस्तान नोज इट दैट दे वर बैटर्ड एंड शैटर्ड एंड लुक एट द मैसेज दैट वी हैव गिवन.
1: सो मिस्टर नथानियल कमिंग टू यू आप क्या कहेंगे ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धियां रही हैं जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी बताया डिफेंस सेक्टर में. अगर हम नक्सलिज्म की बात करें नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इसी वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया.
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था उसके बाद CRPF ने काफ़ी जोरों से वहाँ काम किया बंगाल में क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह का आसपास था ज़्यादातर. वहाँ पे जब तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ दूसरे इलाकों में. तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया वहाँ पे खासकर अबुजमांड एरिया में. वहाँ पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था और वापसी में जब आते थे तो काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते थे और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते बड़े तादाद में 200-300 के तादाद में 70-80 आदमी पे अटैक करें. उससे क्या था कि काफी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह खत्म करना है तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें खत्म करना ही है. और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और CAPF के CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जिसमें BSF CRPF CISF ITBP ये सब उसमें आते हैं SSB भी है तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है इससे पहले आपने खत्म करना. उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं. जंगलों में आप कितने देर जाएंगे 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है. तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की. शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की तब इनके ऊपर अटैक होता था कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे काम छोड़ के निकल जाते थे तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई. गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो क्योंकि इट इज मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है. तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रेच बना दिए. उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आने शुरू हो गए और उनको CRPF का प्रोटेक्शन दिया गया. इस हिसाब से फिर काफी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड्स बिछाने लग गए. इन रोड्स के बिछाने की वजह से

0: सरांडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया, नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहां जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती। लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, एक दो कैजुअल्टीज हुए लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ता है नाइट विजन डिवाइसेस। तो इन चीजों से हम काफी फायदा, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन ये काफी तादाद में जब वहां यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: So, पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहां तैनात होते हैं इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या एमएसएमईज या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए, जैसे मैंने आपको बताया एचएएल की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट एचएएल स्मार्टन्स अप, सो दैट आरपीएसयूज आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन कंपेटिटर, ही इज मोर बॉदर अबाउट द चाइनीज कंपेटिटर। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कंपीट करने की काबिलियत रखती हैं। सो वी नीड डोमेस्टिक कंपटीशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देख लें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के लिए, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर्स की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज एआई इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वॉर्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वॉर्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाई अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए हैं और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं, पामर लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग वॉट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर वी नीड मोर रिफॉर्म। देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, which is linked to procurement reform and all. मैं आपको बताऊं कैसे, हम जब बाहर जाते थे 2005-06 में, तो लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं। हम कहते साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट। टुडे इफ द लास्ट फिगर्स वर आर राइट, इन फैक्ट आई वाज हियरिंग द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 38,000 crores,
1: yes.
2: अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, दिस इज अ 5,500% की उछाल है,
1: और 80 देशों में जा रहा है।
2: 80 देशों में, जैसे आपने कहा आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। 145 फर्म्स हैं एमएसएमईज वगैरह सब मिला के विच आर डीलिंग विद दिस। आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग, और ये आप देखें दिस इज ऑल्सो जियोपॉलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है, इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस देके चीन को भेजा है, So exports are a geopolitical lever. They are a source of revenue. They make so much sense. And I think this is one area where we have, in fact, we are moving from being importers from the world to exporters to the world.
1: In fact, जो positive indigenization lists आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक items हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, make in India की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक earmark करते हैं कि ये products यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी production capabilities में और वो अब दिखाई भी दे रहा है export में।
2: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था। देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊं हकीकतन हो क्या रहा था। मान लिए एक टैंक है, अब भाई हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे, हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग, बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे, एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था, तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य यह था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे और एमएसएमईज बना सकते हैं। आजकल तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं। तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे, पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा, बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो हमने बना लिए। सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने डीपीआई नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी, तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नो नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट। तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इम्पोर्ट के खर्च था वो कम हुआ है, नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर वी विल परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट।
0: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़
2: जाते हैं। देखिए बुनियादी सवाल क्या था, आई जी साहब ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेस डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेस डेवलपमेंट, रॉन्ग, इट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, साथ चलना है। सो दीप जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी, वी हैव टर्न्ड इट अराउंड, वी ग्रो अप इन साइलोस, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, PSUs, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया अपनी दुनिया में, अरे भाई एकेडमिया में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, प्योर साइंसेज नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती, एवरीबडी हैज टू इंटीग्रेट। सो देयर इज अ लार्जर कंसेप्चुअल चेंज ऑल्सो विच इज ड्राइविंग ऑल दीज I would say mega reforms.
1: So, ये जो conceptual change की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और reflection FTI जो defence में FTI को liberalize किया गया है 74% तक via automatic route and 100% via government. तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में कि इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक important reform है।
2: बिल्कुल, तो आप एक छोटी सी कहानी सुने। I was growing up 1980s, आपको भी याद होगा, you said space is an exquisite thing, few countries to it. Countries, I'm emphasizing. So, USSR, USA, India was also. But हम whispers में बात करें। हमारे सिलसिले में क्या हो रहा था? That national security, only government can do it. Only DRDO because it is exalted, lofty. और उस दायरे के अंदर क्या हुआ कि in this PSU complex, a lot of, shall I say, slots slipped in, inefficiencies. और उसको protect करने के लिए हमने कहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पे प्राइवेट सेक्टर प्रूव दैट इट हैड एफिशिएंसीज ऑफ इट्स ओन। तो FDI में भी यही था पहले, और इसको हमने पहले कैसे कहा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, द प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए। सो उस तरह से ये जो FDI धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, PSU स्ट्रक्चर में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए हमको PSUs या से कोई गिला नहीं है, ऑल दैट वी आर सेइंग, आप PSU हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप्स हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। एंड इफ यू लुक एट द फ्यूचर, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी, यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन। सो I am saying कि इंडिया में भी HAL, BEL, they are very good companies, but इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा, they have to become AI companies,
1: because the delivery is digital. Startup revolution जो आया है भारत में, और we are the third biggest startup ecosystem in the world, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, जिस तरह की आप बात करें कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए उस दिशा में।
2: बिल्कुल, मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स, बिकॉज दे आर एजाइल, دے آر ناٹ بیوروکریٹک. یو نو یہ جو چیزیں آج کل جیسے میں نے بتایا, میرے کو تو یہ لگتا ہے یہ سب پتہ نہیں کیا کہیں کہ سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوا ہے اے آئی اور سائبر کوانٹم, یہ راشٹری سرکشن ہوا ہے. اینڈ موسٹ آف دیز ٹیکنالوجیز لائک دا کسپ آف سول ملٹری فیوژن, جس کا استعمال راشٹری سرکشا میں ہے, سول اسپیس میں بھی ہے. آپ دیکھیے 10 سال میں کتنا کمال کر دیا. میں نے آپ کو انعام گنائے تھے, دیز آر جسٹ آئی ٹی انجینئرز, کسی نے گراج میں شروع کیا, کسی نے کچھ کیا, بٹ دے ہیو ڈیلیورڈ. اینڈ آئی ایم اونلی ٹاکنگ آف دا ڈیفینس اسپیس, ان دا سول اسپیس تو اور بھی ہوا ہے. سو آئی ول گو بیک ٹو ورڈ دا پرائم منسٹر, آئی تھنک اٹ واز ویری امپورٹنٹ, ریلیز دا فورسز آف انوویشن, انرجی اینڈ انٹرپرائز فرام دا سکرج آف پروسیس اینڈ پروسیجر. ہم نے جو اتنے رولز نیم شیم بنا کے رکھے تھے, دیٹ واز تھروٹلنگ نیشنل سیکورٹی, اس کو آزادی ملی ہے ابھی.
1: سی چینج ہے پورے ایٹیچیوڈ میں اگر ہم دیکھیں پچھلے 12 سالوں میں. مسٹر تھیتل, حالانکہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں لیکن بہت ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم انفراسٹرکچر, یہ کتنا ایوالو ہوا ہے اور اس میں مضبوطی کتنا ایک امپورٹنٹ اپلبدھی ہے ہمارے جیسے دیش کے لیے.
0: ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں بات کریں تو اٹ کورز دا انٹائر کنٹری, رائٹ فرام جے اینڈ کے ٹو ساؤتھ اینڈ ایون ایسٹ ٹو ویسٹ. اور زیادہ جو افیکٹڈ ابھی ہیں یہ جے اینڈ کے ہے اور نارتھ ایسٹ. نارتھ ایسٹ میں بھی تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے سوائے منی پور کے, جہاں پہ ابھی تھوڑا سا پرابلم ہے, لیکن ابھی کوبرا بٹالین وہاں پہنچ گئے ہیں. اسی طرح کوبرا بٹالین اب جے اینڈ کے میں ہی پہنچ گئے ہیں, سو دیٹ آرمی از ریلیوڈ آف دیز انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹیز. اینڈ کوبرا بٹالین الانگ ود ادر سی آر پی ایف بٹالین آر آپریٹنگ ان دوز ایریاز. اب وہاں پہ بھی استھتی مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا, اور نارتھ ایسٹ میں تو آلریڈی تقریباً ٹھیک سماپت ہو گیا ہے. حالانکہ کچھ ہیں, ایک تو الفا ہے آسام میں جو کہ ابھی بھی تھوڑا سا کچھ شرارت کرتا رہتا ہے, لیکن ہمارے قابو میں ہے, وہ زیادہ کچھ بڑا ایسے ہنگامہ نہیں کر سکتا. لیکن جے اینڈ کے میں جو ہے وہاں پر آرمی راشٹری رائفل تو رہے گی, اور ان کے ساتھ مل کے سول پولیس کے ساتھ مل کے آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ بھی اسی طرح کا پیس ہوگا جیسے کہ 1989 سے پہلے تھا, اور لوگ اور بھی جانا شروع کر دیں گے.
1: سو اس آپٹیمسٹک نوٹ پر اس چرچا کو یہیں سماپت کرتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل شکلا, مسٹر نتھانیل, آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ آئے, اور بھارت کا جو رکشا شیتر ہے کس طرح سے ایوالو ہوا ہے پچھلے 12 ورشوں میں پردھان منتری نریندر مودی کے نیتتو میں, اس پر آپ نے پرکاش ڈالا, بہت بہت دھنیواد.
3: وشیش شرنکھلا جن سیوا سے دیش سیوا کے 21ویں سنسکرن میں ابھی آپ سن رہے تھے پریچرچا, راشٹری سامرتھ اور سرکشا میں آتم نربھرتا. اس میں بھاگ لے رہے تھے رکشا وشلیشک لیفٹیننٹ جنرل راج شکلا اور کیندری ریزرو پولیس بل سی آر پی ایف کے پورو مہانرکشک ایم پی نتھینیل. کارکرم کا سنچالن کر رہی تھی سونو سود. یہ کارکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستوت کیا گیا. اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کارکرم کے سمبندھ میں اپنی پرتیکریا آپ ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں. ای میل کا پتا ہے airnsdtalks@gmail.com, اور واٹس ایپ نمبر ہے 9289094044.
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. मीडियम वेव 462.96 मीटर पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है. अब पेश है फिल्म संगीत. कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश पाटकर के स्वर में. संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम पुजारी फिल्म का गीत, बोल नीरज के थे श्री बर्मन का संगीत। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत

0: अब सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे, उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है। अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ अंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: It's so important. We want to bring solar energy into our lives and homes for more reliable and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था,

0: 30 अक्टूबर तक जापान के आईची आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार पर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की, कहा रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani News at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2040's visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate New Delhi tomorrow. French-Japanese scientists duo Henri Bicaran and Ken Sixt Nobel Prize in Chemistry for solving molecular asymmetry mystery. And Paralympic champions Pramod Bhagat as flag bearers at Asian Para Games beginning in Japan later this month. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said, India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Mr. Modi said the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas hi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. Samasya sabki hai, to samadhan bhi sab. Aur isliye हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The Prime Minister said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growth. Emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said earlier, efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. Mr. Modi said such transformation is possible when the intent is clear and policies are well defined.
2: Desh ne mujhe bahut kuch diya hai, isliye desh ke liye mera daitva bhi hai aur main hriday se ye manta hu ki desh ke har nagrik ka

कार्यक्रम में अब सुनिए वो कौन थी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज में। बोल राजा मेहंदी अली खां के हैं, संगीत दिया मदन मोहन ने।

अभी आप सुन रहे थे मजबूर फिल्म का गीत हेमंत कुमार का गाया हुआ, इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। इसी के साथ चित्र गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम वीबीजी राम जी भी कहते हैं, वो ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा होने पर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी मनरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस संबंध में बातचीत बारे में समझने के लिए इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ में है आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे वीबीजी राम जी भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
2: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी, यह एक ऐतिहासिक एक्ट जो बना हुआ है वह पूरे देश में लागू हो चुका है। एक ही दिन में भारत देश के सारे ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत जी

0: स्थान पे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और इसलिए किसान, जलवायु और जल सुरक्षा ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर ये बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। और किसानी के साथ साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस, जिसे लचीलापन कहते हैं, वो करने के लिए, या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात, इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली अफेक्ट होने की संभावना है, कुछ एडवर्सली अफेक्ट हो भी गए हैं, तो ड्रॉट प्रूफिंग बात है, यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है, सोच में रहा है, और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई।
1: ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सौर स्ट्रीट लाइट की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, पुस्तकालय, स्कूलों के अतिरिक्त कैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम इस दिशा प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे?
0: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गांव के लोगों में है, और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए। ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, यह एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारे बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जब प्रसंस्करण होता है तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न इसमें ऐड किए हैं, और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के?
0: विकसित भारत, जी राम जी, जब हम कहते हैं तो उसकी शुरुआत में ही विकसित भारत आता है।
1: जी
0: ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी, निखिल जी, आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती। इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव्स में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है। जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में, तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के मार्ग कामों का, और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गांव की कल्पना की गई है, और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है, जिन प्लान्स में ये 375 टाइप के काम भी आए।
1: संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं, और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग 1.1% था, अभी बढ़कर वो 26% हो गया। तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है?
0: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह

0: है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़कर के दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही, खासतौर पर ऐसे समय में जब हमें ऐसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य जो है वो विकसित भारत जी राम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जी राम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है, और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: जी, जैसा कि आपने भी बताया, तो मैं आपसे यहाँ पर ये जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं, वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको विकसित भारत जी राम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का, जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान का एक फ्रेमवर्क जो है वो इश्यू किया गया और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा, तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से, हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की, तब जो है ग्राम सभा ही कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको की यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस में उसे डिस्प्ले किया जाएगा, और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है, और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई, उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेकर वह भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें, तो उस

जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो जो तक बननी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, द पीपल्स लाइव्स इजियर, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की, उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह दो प्रकार से किया जा रहा है। मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है, वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं, जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहां पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहां पर कंस्ट्रक्ट करने से वहां सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा। तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है, परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा। वह एसेट्स के दोहराव को से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एन एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई टेक्निक फेल हो जाती है, कोई टेक्निकल डिफिकल्ट से, तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी।

की गई है जिसमें कि 38 काम है। हमारा देश जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है। वल्नरेबल कुछ एरियाज है जहां पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज

0: स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता।
1: कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है, निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए
0: के एक्ट कई सारे गुणवत्ता मूलक गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है। पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी, विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जी राम जी में उनकी निगरानी करेंगे, तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा। और

0: विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों को भी स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती जब भी कोई आपदा आती है और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा ये?
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशंस आपको एक्ट देता है उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना कैलमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125 वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से। अगर आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो क्या है, कहां पर कौन कौन से रिलैक्सेशन अवेल किए हैं। तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है और हम भी वीवी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं। तो अगले वर्षों में या अगले दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या ये सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उस पर भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे?
0: विकसित भारत जी राम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि विकसित भारत बनाना है और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो आने का ही है और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे आपने कहा, अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीवी जी राम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी। हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत जी राम जी।
1: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करनी चाहिए?
0: 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है ऐसा मैं कहूंगी। विकसित भारत प्रावधानों को केवल ना देखें, विकसित भारत जीराम जी में जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे युवाओं को और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उन्होंने भी विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जीराम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भविष्य देगा।
1: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती है जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं?
0: निखिल जी, विकसित भारत जी राम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है, इसीलिए आपने जो पूछा वह बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीवी जी राम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, हमारी दीदियां जैसे मैंने कहा लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है, तो दीदियों से लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही है, तो वीवी जी राम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास

इसकी ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है, जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही हैं, तो वीवीजी राम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए नाटक खामोश सच। प्रतिभागी हैं MM कपूर, अंजुश्री मुखर्जी, तपन मुखर्जी, चमन दलाल, दिलीप लोकरे, उमेश कुलकर्णी और उदित तिवारी।

0: आपने हमें ना तो कभी चाय पर बुलाया और ना ही कभी पार्टी दी।
1: अरे भाई देखिए हमारा तो वही हाल है, घर आओगे तो क्या लाओगे और अपने घर बुलाओगे तो क्या खिलाओगे। लेकिन डॉली डॉक्टर इला कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही।
0: वो रही उस तरफ। इला इला सुनो, ये मिलना जी आई। हाँ इधर आओ, ये मिलना चाहती हूँ आपसे।
2: अरे डॉक्टर इला कहाँ थी आप, अब दिखाई दे रही हैं। और ना डॉक्टर रमन, आखिर सालगिरह की बधाई हम लोग दे तो किसको दे।
3: अरे हाँ इला, डॉक्टर रमन खुद कहाँ गायब है, और तुम भी।
0: अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी रमन को फोन करने गई थी। आ रहे हैं ना डॉक्टर साहब।
3: हाँ, वो हॉस्पिटल से चल चुके हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं।
0: अच्छा अच्छा,
4: लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप दोनों की शादी वादी कब हो रही है।
3: अब ये तो समझ कीजिए।
4: नहीं भाई नहीं, हमसे इतनी अच्छी पार्टियों का इंतजार नहीं होता। अब बस फटाफट कर डालिए शादी।
3: लीजिए रमन आ गए।
5: हाय डॉक्टर।
6: हेलो
7: डॉक्टर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
8: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग। लेकिन हद करते हो यार, पार्टी है और तुम हो कि अभी तक।
7: क्या करें यार, एक इमरजेंसी केस आ गया था, उसे देखकर सीधा चला आ रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, ओर से वर्षगांठ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए।
7: ओह शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बड़े सुंदर फूल हैं।
0: मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
7: ओह थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स। माफ की, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: रमन, तुमसे मैंने अपनी सहेली डॉली के बारे में बात की थी ना।
7: वही, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त।
3: वही है।
7: अच्छा, तो आप हैं डॉली। इला से बहुत तारीफ सुनी थी आपकी, लेकिन मुलाकात आज ही हुई।
0: तारीफ तो हमने भी बहुत सुनी है आपकी।
7: किससे?
3: अच्छा जी, तो ये भी बताने की जरूरत पड़े। सुनो रमन, तुम अकेले आए हो, वो जैक कहाँ है?
7: अरे यार, चार बार फोन किया था उसको, लेकिन हर बार एक ही आवाज और एक ही जवाब, साफ घर पर नहीं है।
3: लेकिन उसे मालूम तो है कि आप
7: पार्टी। हाँ हाँ, सब मालूम है उसको, पिछली बार ही सब कुछ बता दिया था।
0: कौन कौन कौन जैक?
7: हाँ हाँ, सुधांशु बनर्जी। आप तो अच्छी तरह जानती होंगी उसको।
3: ओ गॉड, वो सुधांशु, क्यों इतना घबरा क्यों गए आप?
4: अरे क्या बताऊं इलाजी,
3: क्या
4: एक बार मैंने उससे लिफ्ट मांगी थी।
3: अच्छा,
4: असल में देर हो गई थी ऑफिस को, इतना सुनना था कि उसने इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाई, इतनी तेज चलाई कि बस जैसे हवा में उड़ रहा हो। 3 दिन तक नींद नहीं आई मुझे।
9: आइए आइए आइए, श्रीमान सुधांशु बनर्जी उर्फ जैक साहब, अरे आपका ही इंतजार हो रहा था।
10: सुधांशु, तुम प्यारे खूसट और पिलाल बुढ़े होकर ही मरोगे।
11: अरे यार, जन्मदिन तो डॉक्टर का है और इतनी सारी शुभकामनाएं तुम हमें दे रहे हो। क्या बात है, ऐसा क्या किया है हमने?
1: देख सुधांशु, बात यह है कि तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था अभी कि बस तुम आ गए, यानी कि 100 साल की उम्र तो तुम्हारी पक्की है और बाकी अल्लाह जाने।
11: अरना, और वो भी बुढ़ा होकर। हम उनमें से नहीं है जिन्हें बुढ़ापा आए, सदा बहार जवानी वाले लोग हैं हम। और अगर था तो ये डॉक्टर किस मर्ज की दवा है।
10: यार।
3: और तुम्हारी तरह जवान दिल कभी बूढ़े हुए हैं?
11: बिल्कुल ठीक, हम पैदा हुए थे और जवान ही मरेंगे। हाँ, तो डॉक्टर रमन, आप हमारी ओर से वर्षगांठ की बधाइयां स्वीकार कीजिए।
7: बिल्कुल स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। पर यार हमें ये बताओ, इतनी देर कैसे हो गई?
11: अब क्या बताऊं यार, कल बिजनेस के सिलसिले में नागपुर जाना पड़ गया था और वहाँ से सीधे घर और घर से यहाँ।
3: लेकिन जय, आज तुम्हारे वो खटारे की आवाज नहीं सुनाई दी, वरना तुम्हारे आने की खबर उसकी आवाज से मालूम हो जाती है।
11: अच्छा जी, तो हमारी 22,000 की नई मोटरसाइकिल की ये औकात? अरे इला जी, वो तो उड़न खटोला है, उड़न खटोला।

0: अब तुम दोनों कर डालो शादी।
1: नहीं यार, अभी नहीं करेंगे।
0: देखिए श्रीमान, इतनी बात तो बिल्कुल साफ है कि आप दोनों को शादी करनी ही है, लेकिन कब? और इस कब के चक्कर में हमारी पार्टी को बेवजह।
2: अभी ये पार्टी तो खाई नहीं और अगली पार्टी की बातें कर रहे हो।
0: क्या बचा है पार्टी में? अब आपके घर में

0: डॉक्टर रमन, अब हमें भी इजाजत दे, बहुत देर हो गई।
1: ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक्स, थैंक्स लॉट।
2: फिर
1: गुड नाइट।
2: जरूर आइए। ओके गुड नाइट।
1: ओके गुड नाइट।
3: हां अच्छा
2: चलिए, गुड नाइट।
4: ओके गुड नाइट,
1: बाय
2: बाय।
3: हां हां जरूर आऊंगा। ओके
1: बाय
3: बाय।
4: चलो, पार्टी तो अच्छी तरह निपट गई।
1: हाँ, ये बात तो है।

0: वही रोजाना के समय।
1: हाँ वैसे कल कोई है ना।
0: हाँ
1: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
0: ओके,
1: ठीक है, गुड नाइट।
0: गुड नाइट।

0: आपके पास?
1: अच्छा ठीक है, कोई एक्सरे वगैरह कोई टेस्ट वगैरह करवाया है?
0: जी जी हाँ, ये रहा, ये रहा डॉक्टर
1: वो दीजिए बायोप्सी रिपोर्ट।
0: जी।
1: ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको मैं बुला लूँगा, आप बाहर बैठिए।
0: जी
1: देखो
0: क्या बात है रमन?
1: हिला, ये एक्सरे रिपोर्ट
0: हाँ
1: और ये रिपोर्ट भी देखो,
0: हाँ
1: इस आदमी को कैंसर है और
0: अच्छा,
1: वो भी लास्ट स्टेज पर, और कहता है कि मेरा इलाज कीजिए।
0: तो क्या हुआ इलाज?
1: नहीं, मैं केस को हाथ में नहीं लूंगा, और तुम्हें तो मालूम है इला कि ऐसे केस में मैं हाथ नहीं डालता जिनमें कुछ आशा ना बची हो।
0: लेकिन बीमारी को कम तो किया जा सकता है, और अगर मान भी लिया जाए कि आदमी नहीं बचेगा, तो भी इसका मतलब ये तो नहीं कि मरीज को दवा ही ना।
1: देने को दूसरे डॉक्टर शहर में बहुत मौजूद हैं,
0: तुम क्यों नहीं?
1: क्योंकि इससे मेरी रेपुटेशन में फर्क पड़ता है।
0: रेपुटेशन रेपुटेशन, मुझे चिढ़ है तुम्हारी इस बात से।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूं डॉक्टर साहब? क्या बात है यार, क्या कोई खास बात? अगर आप कहें तो मैं
1: नहीं नहीं
2: आता
1: नहीं नहीं
2: हूं।
1: नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे यार, आओ इधर बैठो।
2: लेकिन कोई बात है तो जरूर।
0: देखो जैक, एक मरीज अपने जीवन के अंतिम समय में इनके पास आता है अपने इलाज के लिए। चूंकि इनके अनुसार उसका मरना निश्चित है, इसलिए रमन उसका इलाज करना नहीं चाहते।
2: मरना निश्चित है? अरे भाई, मरना तो सभी का निश्चित है, सभी को मरना है एक ना एक दिन।
1: असल में इस मरीज को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है।
2: तो क्या हुआ, तुम्हें तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए।
0: यही तो मैं कहती हूं, डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए।
1: लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं।
0: मैं लेती हूं रिस्क, मेरी जिम्मेदारी पर आप उस मरीज का ऑपरेशन करेंगे।
1: ठीक है, मैं ऑपरेशन करूं?
2: अच्छा
1: हाँ,
2: कहो।
1: मरीज को सारी स्थिति साफ साफ बतानी होगी।
0: नहीं, हरगिज नहीं। तुम चाहते हो वो आदमी ऑपरेशन से पहले ही मर जाए?
1: मैं मरीज को धोखे में नहीं रख सकता।
2: फाड़ में गए तुम्हारे ये आदर्श, ये नियम। एक मरीज मौत के करीब है और तुम उसे सहारा देने की बजाय अपने आदर्श और नियमों की लकीर पीट रहे हो।
0: देखो देखो रमन, तुम इस शहर के सबसे अच्छे सर्जन माने जाते हो, दूर दूर के लोग तुम्हारा नाम जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पास आने से कतराते हैं, सिर्फ सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा ना कह दो।
1: लेकिन मरीज को धोखे में रखना एक पाप है डॉक्टर के लिए।
2: कुछ नहीं है पाप। कोई मरीज तुम्हारे पास जीवन की आशा लेकर आता है, और जब तुम उससे कहते हो कि बहुत देर से आए, तो मालूम है मरीज वहीं मर जाता है कि जिंदा लाश।
0: देखो रमन, ये ऑपरेशन जरूर करो, और अगर तुम सक्सेसफुल हो गए
1: देखो
0: तो
1: देखो इला, झूठी आशा दिलाने से कोई फायदा नहीं।
0: ठीक है। अगर तुम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हो तो ये ऑपरेशन मैं करूंगी।
1: इला,
2: ये हुई ना कुछ बात? हाँ, हो जाए इसी बात पर एक फर्स्ट क्लास कॉफी।
0: अच्छा, लेकिन कॉफी का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है।
2: अरे कौन बेवकूफ यहां कॉफी पीने को कहता है, और यहां तो मुझे पानी से भी स्प्रिट की बू आती है। चलिए, आज हम आपको किसी बढ़िया रेस्तरां में कॉफी पिलाएंगे।
0: ठीक है, आप लोग कॉफी पीकर आइए।
2: और आप?
0: नहीं, हम नहीं आएंगे, बहुत सारे पेशेंट्स देखने हैं।
1: सचमुच आज मरीजों की लंबी लाइन लगी है, फिर कभी।
2: ठीक है, हाँ आप जानिए।
0: ये कॉफी तुम पर उधार, बिल्कुल
2: हाँ,
0: पक्का।
2: हम संडे इवनिंग ठीक 6 बजे रेस्तरां पहुंच जाएंगे।
0: बिल्कुल।
2: अच्छा डॉक्टर, हम चलते हैं। हाँ,
1: पर इस समय तुम जाओगे कहाँ?
2: वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक।

0: माय गॉड
1: कितनी गर्मी है आज। जैक आओ उस तरफ बैठेंगे, उधर कूलर के पास।
2: हाँ हाँ चलो आओ, उधर ही बैठेंगे।
1: यहाँ सचमुच ठंडक है यार।
2: हाँ भाई यहाँ कुछ ठंड क्या है। हाँ अच्छा आप ये बताइए कि इला जी क्यों नहीं आई?
1: अरे आते वक्त इला का मूड कुछ ठीक नहीं था।
2: मूड ठीक नहीं था? क्यों, कोई खास बात?
1: वही हुआ जिसका डर था। उस कैंसर वाले मरीज का ऑपरेशन इला ने बड़ी मेहनत से किया। जितना किया जा सकता था सभी कुछ उसने किया, लेकिन लेकिन वो बच नहीं पाया।
2: खैर अपनी ओर से पूरी कोशिश करना डॉक्टर का काम है, फिर चाहे मरीज बचे या ना बचे। और फिर ये रिस्क शब्द भी तो ऐसी ही परिस्थितियों के लिए बना होगा है।
1: देखो जैक, ये रिस्क शब्द विश्वास की कमी को दिखाता है, और इसलिए मैं कभी रिस्क नहीं लेता।
2: अरे यार डॉक्टर तुम तो फिर संजीदा हो गए। अच्छा आप ये बताइए कैसी छन रही है?
1: हमारा क्या है यार, सब ठीक ही है। वैसे भी मरीजों से फुर्सत कहां मिल पाती है। तुम सुनाओ, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है?
2: हाँ, ठीक ठाक।
1: अच्छा ये बताओ, कॉफी के साथ कुछ लोगे?
2: हाँ
1: अरे मैं पूछ रहा हूं, कॉफी के साथ कुछ लोगे? जैक क्या है यार, क्या देख रहे हो उस तरफ?
2: अरे यार डॉक्टर जरा उधर तो देखो।
1: अरे क्या है उस तरफ?
2: अरे जरा देखो तो सही, लड़कियों की गैंग हाय।
1: हे भगवान, फिर तुमने यहां का गड़बड़ शुरू कर दी। अरे कम से कम मेरी इज्जत का मेरा तो ख्याल किया होता।
2: अरे तुम भी यार डॉक्टर रहोगे वहीं के वहीं।
1: लेकिन
2: अच्छा यार नहीं देखता बस।
3: अरे हाय जैक, तुम
2: अरे निशा तुम ये खाने? आपसे मिलिए, आप हैं डॉक्टर रमन, शहर के मशहूर डॉक्टर।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मशहूर नहीं, बस यूं समझ लीजिए कि हम बदनाम ही हैं।
2: छोड़िए साहब, और ये हैं मिस निशा गांगुली।
1: अच्छा अच्छा तो आप हैं निशा? क्यों जैक, ये वही निशा है ना जो तुम?
2: बस बस बस बस ठीक पहचाना आपने, ये वही है।
1: हाँ तो निशा जी ये बताइए कि आप कॉफी पीना पसंद करेंगी या कुछ ठंडा वगैरह?
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, फिलहाल तो कुछ भी नहीं।
2: तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं तुम्हें कुछ खाए बगैर तो जाने नहीं दूंगा, शायद इसीलिए तुम मना कर रही हो। और घबराओ नहीं, बिल मैं ही दूंगा।
3: ये बात नहीं है, दरअसल मैं अपनी दोस्तों के संग यहाँ डिनर पर हूँ।
2: अच्छा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा।
3: अच्छा तो मैं चलती हूँ। और हाँ, कल शाम 7 बजे तुम मेरे घर पहुँच रहे हो।
2: किस खुशी में मैं आपके घर पहुँच रहा हूँ? और हाँ, ये आपकी सहेलियों की फौज वहाँ होगी या नहीं?
3: ओ जैक।
2: अच्छा बाबा, पहुँच जाऊंगा तुम्हारे घर पर।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा? आप भी कभी आइए घर।
2: हाँ, बस, बस, बस बस बस बस बहुत हो चुकी फॉर्मेलिटी, तुम्हारी फौज मिस कर रही होगी तुम्हें।

0: मैडम मैडम वो आपसे मिलने आते हैं ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है।
1: कौन?
0: अरे वो लंबे से जो थोड़ा सा
1: एक्सीडेंट,
0: मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप जल्दी चलिए प्लीज।
1: अच्छा अच्छा चलो।
0: ये देखिए डॉक्टर। ओह नो।

नर्स, इन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफर करो और ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां करो। और हाँ, इनका ब्लड ग्रुप भी जल्दी। मैं डॉक्टर रमन को फोन करती हूँ। हेलो, हेलो रमन। हाँ हाँ, मैं इला बोल रही हूँ। सुनो रमन, तुम फौरन हॉस्पिटल चले हो। हाँ हाँ जैक, कोई रमन सुनो, जैक सीरियस है, ऑपरेशन करना होगा, चल चले आओ। हाँ।

0: नर्स
1: कहाँ है पेशेंट?
2: उधर इमरजेंसी में सर।
1: इला क्या रिपोर्ट?
2: खून बहुत बह चुका है। रमन तुम ही देखो।
1: इला इसके चेस्ट का पूरा एक्सरे ले लो, फॉरन एक्सरे लो। और इसका ब्लड ग्रुप क्या है?
2: ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और ये रहा एक्सरे, मैंने पहले ही 3-4 एक्सरे ले लिए।
1: गुड, वेरी गुड, ये तुमने अच्छा किया। तुम आओ मेरे साथ। नहीं नहीं रहा।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: ये देखो हाँ। इस बोन को देखो।
2: तो क्या हुआ?
1: इला जैक नहीं बचेगा।
2: रमन कैसी बातें कर रहे हो, फिर वही ना समझी।
1: मैं नम समझी की बातें नहीं कर रहा हूं। ये देखो, ये ऑपरेशन करना बेकार।
2: नहीं बिल्कुल नहीं, ये ऑपरेशन भी जरूर होगा और ये ऑपरेशन तुम्हें ही करना होगा।
1: कौन कहता है कि मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता? लेकिन नीला, ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा। देखो तुम समझती क्यों नहीं?
2: एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मरीज को होश आ रहा है।
1: ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूं।
2: लो आ रहा है उसे होश। कह दीजिए उससे भी कि तुम भी मरने वाले हो, तुम्हारा भी खेल खत्म है जैक।
1: तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं वही कह रहा हूं जो सच है।
2: कुछ भी सच नहीं है। उसकी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, चाहे स्थिति कुछ भी हो।
1: बोलो जैक। कहो जैक।
3: रमन।
1: हाँ हाँ बोलो।
3: रमन ये क्या हो गया?
1: अरे तुम फिक्र मत करो यार।
3: क्या होगा रमन?
1: तुम शांत रहो मेरे यार।
3: रमन नहीं, तुम तो सब जानते हो ना।
1: देखो जैक, तुम्हारे लिए बोलना ठीक नहीं। प्लीज
3: रमन,
1: प्लीज शांत रहो।
3: तुम बताओ रमन।
1: देखो
3: तुम्हें सही बस चुप रहो, बतानी होगी डॉक्टर।
1: देखो तुम सिर्फ खामोश रहो, इलाज तुम्हारे ऑपरेशन के लिए तैयारी करने गई है।
3: क्या तुम नहीं करोगे मेरा ऑपरेशन?
1: ये बात नहीं है जैक।
3: देखो डॉक्टर, तुम अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे हो।
1: हाँ हाँ मैं ही करूंगा तुम्हारा ऑपरेशन। नर्स इसे ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफर करो, मैं तैयार होके आता हूं।
2: रमन मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूं, मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे?
1: नहीं, जैक चाहता है कि उसका ऑपरेशन मैं करूं।
2: ये तो मैं भी चाहती हूं, लेकिन तुम तो
1: नहीं। इला नहीं, आज जैक का ऑपरेशन मुझे ही करना होगा।
2: पर तुम तो मना कर रहे थे ना।
1: इला इला आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मौत कितनी बदसूरत होती है। जैक के सामने आज सब कुछ जानते हुए मैं

0: मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ नहीं बोल पाया।
1: रमन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।
0: हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर जैक के पास भी ज्यादा वक्त कहाँ है?

0: लो, ऑपरेशन तो हो गया। क्या तुम्हारी राय में हम सक्सेसफुल हैं?
1: अभी भी वही राय है मेरी ला। ऑपरेशन के बाद होश आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता, और होश आने की बहुत कम संभावना है।
0: तुम रमन बहुत निराशावादी हो।
1: मैं अब और बहस में नहीं पड़ना चाहता।
0: पर तुम जा कहां रहे हो?
1: मैं जैक को इस हालत में नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूं।

0: तीन बज गए, लेकिन लेकिन अभी तक फोन क्यों नहीं आया? पता नहीं जैक कैसा होगा, पर मैं फोन का इंतजार क्यों कर रहा हूं? मुझे तो मालूम है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, जैक को कुछ नहीं होगा। पता नहीं ये लोग मुझे फोन क्यों नहीं करते, सब के सब लापरवाह हैं। ठीक है, मुझे फोन करना चाहिए, मैं ही फोन करूंगा, लेकिन लेकिन
1: मरना और वो भी बूढ़ा होकर, हम उनमें से नहीं है जिन्हें बुढ़ापा आए, सदा बहार जवानी वाले लोग हैं हम।
2: तुम चाहते हो कि वो आदमी ऑपरेशन से पहले ही मर जाए?
0: मैं मरीज क्या नहीं रहता, मेरे कुछ आदर्श कुछ नियम।
1: हार में गए तुम्हारी ये आदर्श, ये नियम।
0: नहीं नहीं जैक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जैक तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैंने डॉक्टर तो एक इंसान होता है ना। हाँ, मैं पहले इंसान हूं फिर डॉक्टर। हेलो, हाँ इलाका हो?
3: जैक को होश आ गया।
0: क्या कहा? जैक को होश आ गया? मेरे जैक को होश आ गया? मेरे जैक को होश आ गया? ओ ओ जैक, ओ मेरे जैक, थैंक गॉड।

अभी आपने सुना नाटक खामोश सच। प्रतिभागी थे M.M. कपूर, अंजुश्री मुखर्जी, तपन मुखर्जी, चमन दलाल, दिलीप लोकरे, उमेश कुलकर्णी और उदित तिवारी। मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील मसूरकर का गायन। राग है यमन। संगीतकार परमानंद गंधर्व और शरद सूर्यवंशी।

咱人的快，咱人的快，人的快乐的妈妈，妈个的个，个的咱人的你的个，个的咱爸妈，爸妈个的个，个的咱人的。

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनील मसूरकर का गायन, राग था यमन। संगीतकार परमानंद गंधर्व और शरद सूर्यवंशी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर

0: 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The Prime Minister said, India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in the last 1 or 2 days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endanger the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royd Mamadov, came under attack while it was flying in the Black Sea. There were 3 Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo-flagged ship, Alpha Vatan, also came under attack yesterday. Expanding on India's broader diplomatic efforts to address the root cause of regional volatility, Mr. Jaiswal